0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:05 हो रहे हैं और कतर के हम दो धुरंधर यहाँ पे पहुंच चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, बातें करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बताने के लिए। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: तो भाई इंतजार किस बात का है, अपने मैसेजेस का सिलसिला कर दीजिए शुरू। बताइए हमें अपने हाल के बारे में, क्योंकि देखिए वेनसडे है, कल एक और दिन है, फिर तो वीकेंड आने वाला है। तो एंजॉयमेंट जो है धीरे धीरे पास आ रहा है, और जब एंजॉयमेंट पास आते हैं तो दिल भी जो है थोड़ा ऐसे झूम उठ जाता है, ये वाह यार मजा। तो ऐसी फीलिंग जो आपकी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बताइए हमें कि दिन कैसा आपने प्लान किया है, क्या क्या करने का इरादा है, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और उसके साथ साथ हमारा मेन जो उद्देश्य है,
1: उद्देश्य
0: जो है वो ये है कि आपको बार बार याद दिलाना कि बाबू मुझे मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट
1: बिंदास होनी चाहिए।
0: गोविंदा चलेंगे, जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपके लिए स्पेशल गाना जो हम प्ले करेंगे, उसके साथ साथ एक और बहुत ही प्यारा गाना है जो आपके लिए आपके रेडियो सेट में आने वाला है। एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, आपको गेस करना है कौन से मूवी का गाना है, ठीक है। सचिन टंडन ने जो है इस गाने को गाया है, गाने का नाम है ख्वाब फरोशी। बस आपको बताना है कि ये कौन से मूवी का गाना है। और आज का दिन भी काफी स्पेशल है वैसे अगर हम देखें तो, क्योंकि आज जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे है, यानी कि मेरे लिए तो हर दिन वही होता है बट आज स्पेशली इंटरनेशनल नो डाइट डे है। और बहुत सारे लोगों को जो है आज बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि आज ऐसा दिन है जहां पे हम दिल खोल के, बेझिझक, बिना किसी संकोच के जो है हम अपने पसंदीदा फूड को
1: जो है एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। देखो exactly.

0: दिन तो चलता है,
1: जी जी जी,
0: एक आध दिन तो चलता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम आपको हैप्पी नो डाइट डे विश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा खाना खा के तो आप यूं ही हैप्पी हो जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: सो बस हमारे साथ खाओ बिंदास,
1: बिल्कुल खाओ बिंदास, और अभी यहाँ पे गाने सुनो बिंदास तरीके से, और कहते रहिए
0: जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: सका मैं।
1: जबरिया जोड़ी मूवी का गाना हमने सुना सचेत टंडन की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
2: और मैं हूं आपकी कशिश।
1: और यहाँ पे आए हैं भाई भर भर के मैसेजेस, तो जरा एक एक करके एक मैसेज रीड करते हैं। सबिया साची का मैसेज हमें आया
2: है। सबिया साची जी का मैसेज हमें आया है। इनको बोलो कि मुझे मेरा शादी का लहंगा देंगे क्या?
1: नहीं, ये वो वाले नहीं है, दूसरे हैं। ये सबिया साची रुद्रा जी हैं। थैंक यू सो मच।
2: मॉर्निंग वाला मोटिवेशन दे दे,
1: मॉर्निंग वाला मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग मैसेज इन्होंने भेजा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोड भी भेज दीजिए, कशिश को लहंगा नहीं मिलेगा कोई नहीं, कोट कोट से ही हम काम चला लेंगे।
2: अपने ग्रूम को दे दूंगी, कोट भेज दीजिए, कोई बात नहीं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि का मैसेज आया है। ऋषि ने बोला है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ, वी हैव टू ट्राई हार्ड एंड मेक थिंग्स पॉसिबल, बी पॉजिटिव, जियो बिंदास, गुड मॉर्निंग करके। वाह, काफी
2: जी बिल्कुल
1: पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक जुजारू मोटिवेशन था ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे मैसेज आया जुल्फी भाई का, जहां पे उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, न्यू डे ब्रिंग्स न्यू थॉट्स एंड स्ट्रेंथ, सो मेक इट काउंट। वाओ, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, जहां पर लिखा है, क्लेवरनेस इज वेन यू बिलीव ओनली हाफ ऑफ वॉट यू हियर, बट ब्रिलियंस इज वेन यू नो विच हाफ टू बिलीव।
2: लाइफ लेसन
1: हाँ बिल्कुल, वो चाणक्य लेवल पे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और अबरार भाई का मैसेज आया है, हैप्पी वेंसडे लिखा है उन्होंने, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे नाजरीन जी का भी मैसेज आया है, लिखा है, लिव इन द मोमेंट, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। बहुत ही सही बात है एक्चुअली, क्योंकि हम ना उस पल में जीना भूल जाते हैं।
2: Yes.
1: एक पल में जीना,
2: हम यहाँ बैठकर जो है अभी परसों की जो है टेंशन ले रहे हैं, जो हमने कल गलती करी थी हम उसकी टेंशन ले रहे हैं।
1: जी जी,
2: कि मैनेजर आएंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन अभी अभी तो जी ही नहीं रहे हैं।
1: अभी जीना शुरू कर दीजिए यार, क्योंकि अभी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: Yes.
1: मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर की चिंता नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर की चिंता आपके प्रेजेंट मोमेंट के पीस को अगर खा जा रही है तो उस चिंता से कुछ खास लाभ होने वाला है नहीं। तो तैयारियां करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को बेहतर बनाना बहुत
2: इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका स्ट्रेस लेते रहना और खुद को परेशान करना और उस वजह से अपने काम को खराब करना, वो सही नहीं,
1: वो सही नहीं है, वो सही एक रवैया नहीं है। और प्रोफेसर कशिश का ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये हमने सुना। थैंक यू सो मच प्रोफेसर कशिश, बहुत अच्छा लगा। और हम एक अगले गाने के बाद जब वापस आएंगे तो एक नए हेड के साथ आएंगे, सवाल के साथ, क्विज मास्टर कशिश आने वाली है सवाल पूछने के लिए। आज देखते हैं कि आप कशिश से कितने तेज हैं। पांचवी छठी तो छोड़ी दीजिए, आज तो सीधा मुकाबला होने वाला है, सीधा मुकाबला फेस टू फेस।
2: आज मुझे पता है, फिर ये ढूंढ के ना कुछ बहुत टफ लेकर आएंगे।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सरल सवाल, ऐसा सवाल मतलब सुन के आप बोलोगे कि आए ये दिया है मुझे करके।
2: ठीक है, तो मैं जाके रिवाइज करके आती हूँ जरा अपना जीके का नॉलेज। आप जो है गाना सुनिए अमेजिंग वाला,
1: और कहते रहिए
2: जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: अरे रुको जरा यार, आ गए, बार बार ऐसे बुलाओगे कैसे ठीक होगा, ऐसे थोड़ा ना होता, आ तो रहे हैं। यहाँ पे क्विज मास्टर कशिश है हमारे साथ,
1: yes, guys.
0: और आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मेरे को तो आप जानते हैं मैं हूँ आपकी कशिश।
0: हाँ हाँ हाँ, सिर्फ कशिश नहीं, क्विज मास्टर कशिश।
1: क्विज मास्टर कशिश, देखिए मैंने अपना सवाल जो है वो सोचा कि मैं रहने देती हूँ।
0: क्यों, क्या हो गया?
1: मेरे सवाल जो है वो बहुत ही बेसिक रहते हैं यार। अच्छा। सब फटाफट बता देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो लाइफ में थोड़ा थ्रिल और थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा तो कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए ना।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: क्वेश्चन
0: जी।
1: आप ही पूछिए।
0: मैं पूछता हूँ, बहुत ही सरल सा सवाल है। देखिए सवाल सुन के आप बोलेंगे यार सुदेव यार क्या यार ऐसे क्या, ठीक थोड़ा और टफ कर सकते थे बोल देंगे हम। देखिए जानते हैं कि चुपती गर्मी का मौसम जो है आने वाला है, और जब भी हम गर्मी के मौसम की बात करते हैं, और हमारे इंडिया में तो भाई आम ही आम मिलते हैं हमें, ठीक है, आम के बिना मौसम क्या गर्मी का। तो सवाल ये है आम का, ठीक है, इंडिया में जो आम मिलता है आम का
1: मुझे पता है कहाँ जा रहा है
0: मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको बताना है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है ये आपको मुझे बताना है। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप कर दीजिए मैसेज हमें 3311106 पर। देखिए आप गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी या फिर क्लॉड AI, जेमिनी, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। सवाल का जवाब आपको भेजना है 3311106 पर। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है?
1: देखिए मेरे दादा अभी अगर सुन रहे हैं तो वो तो देखो सबसे पहले मैसेज करने वाले तोता परी लंगड़ा आम
0: ये तो डिफरेंट टाइप्स है या और भी है बहुत सारे
1: या वो जो भी है मुझे ये तीन ही पता थे। एंड ये जो है ये हमने हमारे दिए हुए नाम है अलग अलग टाइप के नाम है।
0: यस साइंटिफिक नाम,
1: साइंटिफिक नाम,
0: यस शास्त्रीय जो नाम है इसका ये हम जाना
1: शास्त्रीय
0: आज थोड़ी शुद्ध हिंदी की ओर हम कदम रख रहे हैं साउथ दिल्ली एक्सेंट के साथ।
1: वैसे ही एक तो एक्सेंट गलत, ऊपर से हिंदी भी गलत हमारी।
0: नहीं नहीं मेरा ठीक है, आप अपना बोलो।
1: देखिए मेरी इतनी तो सही है कि मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी गलत है।
0: अच्छा बताइए कैसे, जरा बताइए, प्रूव कीजिए।
1: गाने की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस।
0: यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। उसका ही बनाना, बिल्कुल उसका ही बनाना। अगर ऐसा
1: बनाना की बात नहीं कर रहे अभी हम,
0: बनाना
1: मैंगो की बात,
0: बनाना की बात नहीं, मैंगो की बात हो रही है, बट उसका ही बनाना कह रहे हैं मतलब।
1: अच्छा, ये
0: हाँ देखिए ये हिंदी पंडित हमारी जो बैठते बैठते शास्त्रार्थ के बारे में बात कर रही थी। कोई बात नहीं, होता है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं 1920 विल रिटर्न्स का गाना। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हमने पूछा था एक सवाल कि भाई मैंगो जो है, मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, और यहां पे जनता जो है थोड़ी सी घबराहट में आ गई कि ये कैसे हो सकता है। आम तो आम है, इस आम बात के लिए तुम क्यों शास्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हो।
1: मतलब बात तो सही है यार, आम जो है इतने पहले से एग्जिस्ट करता है, इतने पहले से हम उसको जन्म जन्म से खा रहे हैं, सो हम इतने बड़े लोगों का नाम कैसे ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, ये एक काफी वैलिड कंसर्न जो है आपने बताया। मगर यहाँ पे कुछ लोगों ने मैसेज जरूर किया हमें, और उन्होंने सही जवाब भी दिया है। और जैसे कि अनिल जी ने हमें मैसेज किया
1: क्या
0: है,
1: उन्होंने आंसर मैग्नीफेरा इंडिका दिया है।
0: क्या बात कर रहे, इतने सोफिस्टिकेशन के साथ आपने मैग्नीफेरा इंडिका बोला है कि आम को खुद शर्म आ गई कि अरे मेरा नाम इतने प्यार से कोई ले भी सकता है।
1: आम ने अपना नाम आम से खास कर दिया है।
0: वाह, बिल्कुल खास आम,
1: खास आम,
0: आम खास,
1: खास आम,
0: हाँ खास आम। एक और मेरे मन में एक एनालॉजी आया, बट आई वाज लाइक नहीं छोड़ो यार, ये बहुत ज्यादा क्रिंज हो जाएगा।
1: यस।
0: तो जैसे अनिल जी ने हमें मैसेज किया, उसके साथ साथ दीपक जी का मैसेज आया हमारे पास, और एक और दो मैसेजेस आए हैं,
1: एक और दो मैसेजेस आए, और बोल रहे थे हिंदी इज परफेक्ट।
0: हाँ देखिए, गलती तो हो जाती है, हम तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, हम कौन से पंडित हैं। हम थोड़ी ना,
1: देखिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वीक जैसे जैसे जाता है।
0: अभी तो देखो वेनसडे है,
1: वेनसडे आया है, अब कल तो देखना मैं कैसे रोस्ट होने वाली हूँ।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमें एक और मैसेज आया है, बस नाम नहीं लिखा है इसमें, एक स्टार बना हुआ है इनके प्रोफाइल के वहां पे, बट एनीवे सही जवाब दिया है सबने, तो आपके लिए यहाँ पे बजेंगी भाई बढ़िया वाली तालियां, मेरी तरफ से ही नहीं कशिश की तरफ से भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं बता दूं, जब हमने इस सवाल के बारे में पूछा था तो मुझे लगा था कि यार कन्फ्यूजन आ सकता है, क्योंकि मैंगो के बहुत सारे टाइप्स हैं, लोग कन्फ्यूज होंगे नहीं होंगे। बट देखिए, साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का वो है मैंगिफेरा इंडिका, और ये जो है एक फैमिली को बिलोंग करती है, और उस फैमिली का नाम है एनाकार्डियाके करके। ठीक है, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है और इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है वो भी हमें देखना है, क्योंकि मैंगो जो है नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का, यानी कि इंडिया का जो रीजन है, सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है मैंगो पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया है। और एक और चीज बताई गई है कि जो मैंगिफेरा है वो उसका मतलब है कि ये मैंगोस बियर करता है। ठीक है, और इंडिका का मतलब है ओरिजिन इन इंडिया। और एक और चीज ये है कि ये फैमिली जो है इन फ्रूट्स की, इट इज कैश्यूज एंड पिस्ताचियोज, इस फैमिली में आती है।
1: Exactly. Yeah, कैश्यू और पिस्टैचो जो है वो एक कवरिंग के साथ आता है, उनका सीड जो है वो खाते हैं कैश्यू और पिस्टैचो के तौर पे, तो हम मेजरली अब आम के उस पे अलग करते हैं,
0: अलग करते
1: हम ऊपर का फ्रूट जो है वो खाते हैं
0: और सीड को वापस जमीन में डाल देते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए, फिर से पेड़ बन जाए। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग सुनते हैं। और यार फ्रेश सॉन्ग सुनने से पहले जरा याद कीजिए उस पल के बारे में जब गर्मी के टाइम पे घर में आम ऐसे कट कट कट कट कट के ऐसे प्लेट में मम्मी लेकर आती थी, तो एक एक करके खाते थे। अगर याद आया उसके बारे में अभी कर दीजिए मैसेज 3311063 पर, और बताइए उन मेमोरीज के बारे में हमें। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम।
1: जी विंदास रेडियो।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: देखिए मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये कशिश की तारीफ करते हुए गाने यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, कौन कौन कर रहा है ये सब हरकतें?
1: देखिए मेरी तो बात ही और है ना, तो मेरे तो हर गाना मेरी तारीफ ही होता है देखो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सारे गाने आपकी तारीफ होती हैं
1: लगभग,
0: है ना? ठीक है, बस मैं बस यही छोड़ रहा हूँ बात।
1: मुझे पता है अब ये कोई गंदा सा गाना प्ले करेंगे
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ऐसे हरकत नहीं करता, मैं कभी भी क्या कहते हैं किसी की तारीफ को इनवैलिडेट नहीं करता, तारीफ तारीफ होती है भाई, तारीफ तारीफ होती है। और यहाँ पे अभी मौसम की तारीफ करने का मन तो है मगर गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो अभी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आज का लोवेस्ट जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और हवा जो है 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और यहाँ पे मेरे मन में एक ही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा हमें उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: सुदेव किसी हवा में इतना दम नहीं कि वो हमें उड़ा के ले जाए।
0: बिल्कुल सही बात, वाह बेटा बहुत बढ़िया बात कर दिया आपने।
1: एंड ये दम जो है ये कल और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आज नो डाइट डे है।
0: यस, आज नो डाइट डे है तो और 3 प्लेट बर्गर तो ऐसे ही ठोसेंगे हम,
1: बर्गर खाएंगे, तिरामिसु खाएंगे, कोल्ड कॉफी पिएंगे, फ्राइज खाएंगे, ये ये ये ये।
0: तो मतलब देखिए जंक फूड खाने के प्रोबेबिलिटीज हर
1: यार, पता है, देखो मैं बताऊं, मैंने ना एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि यार आप जंक फूड खाते हो और मतलब आप हेल्दी फूड खाते हो लेकिन आप हेल्दी हो जाते हो लेकिन आप हैप्पी नहीं होते हो। आप महीने में एक आध बार अगर जंक खा रहे हो एक नॉर्मल क्वांटिटी में तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ भी ज्यादा खराब नहीं होती और आप हैप्पी भी रहते हो। तो बस आज वही दिन है जिसमें मैं हैप्पी रहने वाली हूँ।
0: जी जी जी, ये हम तो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा हैप्पी है।
1: हम तो हमेशा ही हैप्पी रहते हैं,
0: हैप्पी रहते हैं, मतलब हैप्पी ऐसी तो होता है, ऐसे थोड़ा ना मुस्कुराते रहते हैं फुल टाइम। बट या, और मैं ये भी चाहूंगा कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, आप अपने बाहर के नजारे जो हैं हमें भेज दीजिए, दिखा दीजिए, फोटोज भेज दीजिए। इदरीस भाई ने जो है हमें फोटो भेजा ऑलरेडी, एक उन्होंने बहुत ही प्यारे फोटोज जो है क्लिक किए हैं, गुड मॉर्निंग बोल के उन्होंने थोड़े फोटोज भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम बोला है, वालेकुम अस्सलाम भाई। और सिग्नल का ही फोटो भेजा है, बहुत ही बढ़िया प्यारा फोटो। तो ऐसे ही और भी नजारे जो है हमें दिखाइए, आप कहाँ पे हैं,
1: वॉलपेपर वर्दी फोटोज जो है वो हमें भेज दीजिए क्योंकि ब्राइटनेस देखिए सन की बहुत बड़ी हुई है। सो आई नो आपका जो कैमरा है फोन का वो पूरा जस्टिस कर पाएगा आज सीन के साथ। सो बढ़िया तरीके से एक अच्छी सी पिक्चर हमें भेज दीजिए क्योंकि देखिए ठंडे ठंडे से स्टूडियो में बैठ के
0: जी
1: बाहर की गर्मी थोड़ी सी तो देखिए जरूरत है। फोटोज के थ्रू हमें कन्वे कर दीजिए वो सीन। एंड क्या कहना चाह रहे थे आप?
0: यहाँ पे प्रशांत जी का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनते हो, गणित में हम थोड़े अच्छे हैं ना इसलिए गिनना पड़ता है हमें।
1: इसमें सुदेव पूरी तरीके से अपनी बात कर रहे हैं।
0: अच्छा तो नहीं है ना अच्छी गणित में इसलिए उसे गिनना पड़ता है अच्छा होने के लिए। दोनों आंसर्स हो गए। तो यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी ओ बिंदास।

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हेलो लिसनर्स मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: झुंड मूवी का गाना हमने सुना, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 7:20 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आए हैं कुछ फोटोज। सामी भाई ने जो है हमें एक बहुत ही प्यारा फोटो भेजा है और जैसे कि कशिश बोलती है ना, वॉलपेपर वर्दी, वैसा उन्होंने मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। बोला कि सुदेव भाई, कशिश कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल बढ़िया हैं, आप बताएं क्या हाल है आपके? एक तो यार ये जो फोटो उन्होंने भेजा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा फोटो, देख के मजा आ गया। काफी अच्छा कॉम्पोजिशन, उसके साथ साथ बादलों को दर्शाते हुए एक बहुत ही बढ़िया फोटो एक और बार भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मृणाल का मैसेज आया हमें, मृणाल ने भी एक बहुत ही प्यारा फोटो भेजा है जिसमें से ऐसे बादलों से आसमान जो है थोड़ा भरा हुआ है और बीच में जो छोटे गैप से उसमें से ऐसे सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत ही प्यारा व्यू। और अगर मेरा अनुमान सही है तो ये एरिया मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है, मैं भी शायद इस एरिया से मैं चला हूँ, ये वकरा या बुकेर के आसपास का एरिया है।
1: मुझे भी ऐसी लग रहा,
0: मुझे भी ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच मृणाल, ये मैसेज करा। हाँ वकरा उन्होंने बोला, वकरा
1: करके पहचानने लग गए।
0: चलो अब ठीक है, रास्ते धीरे धीरे याद आने लग गए। और इदरीस भाई का भी जो फोटो आया था, बहुत ही प्यारा फोटो था, एकदम एक सिग्नल का फोटो उन्होंने भेजा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से ये फोटो भी खींचा है। और थैंक यू सो मच यार ये फोटो हमें भेजने के लिए। और उसके बीच में हमें एक और खास मैसेज आया है, मैं बहुत ही प्यार से मेहरून बुलाना चाहूंगा। मेहरूनिसा जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है कि कशी को आम बहुत पसंद है करके।
1: यस सो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये मेरी मम्मी है
0: जी,
1: एंड ये सुदेव की साइड ज्यादा रहती है, लेकिन चलिए मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हें याद है कि मुझे आम पसंद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब मुझे पता है क्या होगा, पता है कि अब जैसे जैसे जैसे लंच का टाइम होगा ना इंडिया में, तो अब क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं, सो मेरी मम्मा टीचर है और वो अब घर आ जाएंगी, सब घर पे बैठेंगे एंड लंच के टाइम पे आम काट के मुझे प्लेट की फोटो भेजी जाएगी। ये देखिए हम तो यहाँ आम खा रहे हैं,
0: तुम क्या कर रहे हो? ये तो हमारे लिए आम बात हो चुकी है, हम गुठलियां गिन रहे हैं। तो चलिए यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद गानों के उस पार जब हम आएंगे तो फिटनेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए तैयार होकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जी अविनाश,
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive. I'm a number
1: one. It's back. Back, it's back. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
2: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
3: यार ये फिर से घासपूस. But biryani smells like this. अरे यार फिर से ककड़ी, ना स्वाद है ना कुछ है. But chips sounds like this. ये करेला क्यों हेल्थी है यार, कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका. बट हॉट चॉकलेट स्वीट भी है, सूदिंग भी है. यू नो व्हाट, समटाइम्स इट्स ओके, एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो.
4: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ बिंदास.
5: Presented by
4: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: साधना सरगम और शान की आवाज में सुना हमने कुछ ना कहो फ्रॉम द मूवी कुछ ना कहो। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश। वैसे हाँ। तो आपने इतनी बार कुछ ना कहो कुछ ना कहो कुछ ना कहो कहा ना, हाँ। मुझे लगा कि कहीं ये मुझे ही तो नहीं बोल रहे।
0: नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ा ना बोल सकता हूं। अगर ऐसे बोल दे तो फिर हम बात ही क्यों करेंगे।
1: देखो, आप तो बोल सकते हो।
0: नहीं, हम नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको गलत फहमी हमारे बारे में, आप हमें गलत लाइट में जो है देख रहे हो। थोड़ा चश्मा एडजस्ट करो, ढंग से रखो। ओके, आप ठीक।
1: मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ। यार दुनिया में कितना ज्यादा वो लोग बढ़ गए हैं जो लोग बुरा कर रहे हैं, या सब मुझे आसपास बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैं बस अपना चश्मा अच्छे से साफ कर लेती हूँ।
0: अच्छा,
1: फिर मुझे सब अच्छा दिखता है।
0: वही वो होता है, क्योंकि
1: पर्सपेक्टिव की बात है,
0: पर्सपेक्टिव की बात होती है। और जैसे कि एक बहुत ही फेमस मूवी में एक डायलॉग है कि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है, ठीक है, तो फोकस में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी फोकस के साथ बात करते हैं फिटनेस के बारे में।
2: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है। तो भाई यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं होल फ्रूट्स के बारे में।
1: ओहो,
0: ठीक है। यूजुअली हम फ्रूट जूस पीते हैं,
1: यस,
0: मगर होल फ्रूट्स खाना फ्रूट जूस से बेहतर होता है। अब क्यों ऐसा होता है, रिसर्च बेस्ड तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे।
1: बताइए।
0: जब हम होल फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें नेचुरली फाइबर होता है, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, जो शुगर के अब्सॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है।
1: ओके,
0: ठीक है। इससे ब्लड शुगर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से शूट अप करेगा।
1: आज एक दिन जो है सेब खा लिए और आज ही लग रहा है कि ओहो,
0: ऐसा नहीं होता। तो फ्रूट खाने से फायदा ही होता है। जब भी हम कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई इंडेक्स बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी फ्रूट इसका हाई होता है फूड आइटम का, तो फ्रूट्स का जो फाइबर है वो स्लो डाउन करता है शुगर के स्पाइक को, इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहता है और आपको ज्यादा देर तक फुलनेस फील होता है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रूट जूस पीते हो तो फाइबर ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है, शुगर क्विकली ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाता है और रैपिड ग्लूकोज स्पाइक जो है हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। और इसका एक और पॉइंट यह है कि जूस में आप इजिली मल्टीपल फ्रूट्स का शुगर एक साथ कंज्यूम कर लेते हो, जो कैलोरीज और शुगर इंटेक को अननोटिस्ड तरीके से बढ़ा देता है। तो रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि होल फ्रूट्स बेटर वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, डायबिटीज के रिस्क को कम कर देते हैं। मोटी मोटी बात ये है कि भाई फ्रूट जूस फास्ट शुगर है, जबकि होल फ्रूट जो है स्लो और बैलेंस्ड एनर्जी प्लस फाइबर का कॉम्बो देता है।
1: एग्जैक्टली, एंड फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बाउल मूवमेंट जो है वो अच्छा होता है, एंड साथ में जो है बॉडी के जो मसल्स हैं उन्हें अलग से एक स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है। सो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा से लगता है कि जो हम फ्रूट जब खाते हैं सो वो ज्यादा बेटर लगता है जूस के कंपेरिजन में। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जूस नहीं पी सकते, वो हेल्दी नहीं होता है। ऑफकोर्स अगर आपको इंस्टेंट शुगर जो है वो अपनी बॉडी में एक रश चाहिए, तो किसी भी ऐसी ड्रिंक जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है उसकी जगह फ्रूट जूस जो है उसे ले सकते हैं। एंड वैसे आज नो डाइट डे है, सो आज आप फ्रूट जूस पी सकते हैं,
0: बेझिझक पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा लोकल अपडेट लेकर आएंगे गानों के उस बार। तब तक के लिए आप गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई कतर स्पॉटलाइट में एक लोकल अपडेट जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये अपडेट आया है द पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अजगल की तरफ से। उन्होंने बोला है कि 47 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और टनल्स जो कतर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है वहां का काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो है यहाँ पे रोड सेफ्टी को एनहांस करने के लिए और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को ईज करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और ये भी बताया अजगल ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के एक पोस्ट के थ्रू कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट किए गए थे, ताकि कतर के की कॉरिडोर्स को ये करेक्ट तरीके से कवर कर पाए और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को भी कवर कर पाए।
1: यस, तो मतलब हमारे लिए देखिए काम तो बहुत सारा होता जा रहा है एंड वो धीरे धीरे करके जो है ऐसे दिख भी रहा है। मैं जब मैं हर सुबह बाहर निकलती हूँ तो कुछ ऐसा नया जो है वो मुझे दिखता है एंड ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार, कि कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप जो है वो हर रोज हो रहा है। सो बस ऐसे और डेवलपमेंट्स की खबर जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहो यार, और बिंदास रहो
0: और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम. मैं हूं जैकी श्रॉफ. रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: रेडियो
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 8:21 हो रहे हैं। Yes. और हम जो है भाई मैच के बारे में
1: can we just skip? आज हम नई बात करेंगे तो चलेगा क्रिकेट पे?
0: बेटा आज तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। चलिए मैं बताता हूँ भाई आपको मैच में क्या हुआ, ठीक है। मैच हुआ था दिल्ली और चेन्नई के बीच में और चेन्नई जो है मैच 8 से जीत गई। एक और विकेट गिर जाता तो हम बोल सकते थे तला फॉर रीजन, मगर मुझे लगता है कि चेन्नई वैसे खेल रही है कि वी डोंट नीड तला, ऐसे करके मुझे लगता है।
1: ओ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया आपने
0: यार। ये इनेविटेबल स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि सी जब तक चेन्नई है तब तक धोनी खेलने वाले नहीं है। एंड आई थिंक इस सीजन में वो यही प्रूव कर रहे हैं कि मेरे बिना भी
1: टीम जो है वो चल सकती है। इसमें तो हमने काफी बार पहले भी बात करी है कि एक अनसेड रिटायरमेंट जो है उसकी तरफ बढ़ चुके हैं, शायद हम नहीं खेल रहे हैं,
0: पता नहीं यार, मनोबल दरिया बहने लगा ये सुन के।
1: यस, बट मनोबल बना रहे इस वजह से मुझे लगता है कि वो इसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं। बट एक दिन स्टोरी आएगी,
0: मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: और उस स्टोरी का इंतजार कोई नहीं कर रहा है, देखिए
0: बिल्कुल हम कोई नहीं चाहता,
1: कोई भी नहीं चाहता कि जो है थाला
0: जाए
1: यस
0: रहे कहीं ना कहीं आसपास बीच में बल्ला ला
1: बीच में। हाँ, एक आध उसके लिए आ जाए,
0: एक आध गेम के लिए चलेगा यार, चाहेंगे हम। बट एनीवे कल के मैच की बात करते हैं। 155 रन स्कोर किए दिल्ली ने, 7 गिर गए थे तला फॉर रीजन।
1: चेन्नई ने जो है 159 रन बनाए, 2 खोकर 17.3 ओवर्स में। एंड संजू सैमसन, ओ माय गॉड, 2 ऐसे अकेले ऐसे खड़े हो गए थे,
0: ताली बजाने का मन कर रहा क्योंकि काफी क्रूशल एक जो है इनिंग्स उन्होंने खेला। 87 रन स्कोर किए उन्होंने 52 बॉल्स में। तो उनसे पूछा भी था कि भाई इतना क्लोज पहुंच गए थे, आपने सेंचुरी क्यों नहीं स्कोर किया? तो उन्होंने बोला कि यार टीम का प्लेयर अच्छा खेल रहा था तो टीम का जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सेंचुरी के पीछे जाता तो बहुत सेल्फिश हो जाता। तो देखिए

0: कल के मैच में, और खुशी तो मुझे भी बहुत है वैसे, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, बट देखते हैं कि आज के मैच में,
1: आज के मैच में क्या होता है। एंड अगर मैं चेन्नई की बात करूं, तो जिस तरीके से हम ये कह रहे थे कि अब हर मैच चेन्नई का जीतना इम्पोर्टेंट है, तो मुझे नो नजर एट ऑल, बट फिर भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है
0: प्लीज हो जाए,
1: चेन्नई अब इस तौर से आगे बढ़े।
0: प्लीज
1: मैं ये विश कर सकती हूँ कि चेन्नई अब हर मैच जीते, लेकिन मैं ये विश नहीं कर सकती कि बाकी सारी टीम्स जो है वो हार जाए।
0: वो मैं विश कर लूंगा कोई बात नहीं
1: पर कोई बात नहीं, मे द बेस्ट टीम विंस, और क्रिकेट की जीत जो है अल्टीमेटली वो होनी चाहिए। और बस यही कहते हुए मुझे लगता है कि हमें गाना
0: प्ले कर देना चाहिए। यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने बोला कि सुदीप जी पूरा गाना गा दीजिए, अगर हम कैसे क्या बात कर रहे हैं, अभी आप ओरिजिनल वाला कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनिए, उसके बाद हम फुर्सत से आएंगे।
1: मैं मना के आती हूँ जरा सुदेव को गाना गाने के लिए,
0: फुर्सत से आएंगे। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए, कहते रहिए
1: जियो बिंदास।
2: कूल सॉन्ग रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: 3 और 3082-1063।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान संदीप
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई थोड़ी देर पहले मतलब अभी अभी हमने सुना कल हो ना हो का गाना।
1: yes.
0: प्रीति जिंटा का एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, मतलब अगर उनका प्लेलिस्ट हम निकालें तो उनमें से बहुत बार रिपीट वैल्यू में जो सुनने वाला एक सॉन्ग है ये। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज उनकी टीम भी खेल रही है।
1: यस,
0: जस्ट इत्तेफाक।
1: हाँ, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं,
0: हमने तो सोचा
1: ही नहीं किया, ऐसे देखिए तो अपने आप हो गया।
0: ये तो अपने आप हो गया, जस्ट हैपेंड, यू नो, जस्ट कॉस्मिक कोइंसिडेंसेस। बट या आज मैच होने वाला है पंजाब और
1: हैदराबाद
0: के बीच में। और अगर हम देखें तो हैदराबाद 10 मैच खेल चुका है ऑलरेडी, पंजाब ने 9 मैचेस ही खेले, मगर वो टेबल के टॉप पर है, 13 पॉइंट्स है उनके पास। और पिछले 2 मैचेस जो है पंजाब हार चुकी है, अगर हम देखें तो
1: नजर का टिका है गाइस,
0: नजर का टिका है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि रन रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों टीम में ज्यादा फर्क नहीं है, एक पॉइंट का डिफरेंस ही है। और अगर ये मैच पंजाब जीत जाती है तो ऑब्वियसली काफी अच्छी तरीके से वो अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करेगी, मगर हैदराबाद ये मैच जीती है तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगी फर्स्ट पोजीशन में, 14 पॉइंट्स मिल हो जाएंगे उनके टोटल। अब क्या होता है टेबल में, कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। मगर आपके प्रेडिक्शंस क्या है, आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा, पंजाब या हैदराबाद, बताइए हमें मैसेज करके 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे शंकर महादेवन और उदित नारायण की आवाज में एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हैं और कहते हैं एंजॉय करिए इस गाने को भाई, और मैसेज करना मत भूलना।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हम एक चीज पूछना चाहेंगे कशिश मैडम से। कशिश मैडम, आपको क्या लगता है कि जंक फूड खाके क्या वजन कम किया जा सकता है या नहीं?
1: क्या
0: जंक फूड खा के वजन कम किया जा सकता है या नहीं, आपको क्या लगता
1: है? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? जंक फूड और वजन कम करना, ये दोनों एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकती।
0: तो कशिश का कहना है कि जंक फूड और वजन कम करना एक सेंटेंस में आ नहीं सकते। अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय भेजिए 3311063 पर और मुझे बताइए कि क्या जंक फूड खाकर वेट कम किया जा सकता है या नहीं। तुरंत आंसर चाहिए, यस और नो में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यस और नो में बता दीजिए आपको क्या लगता है। डिटेल में एक बात हम बताना चाहेंगे, मगर उसके पहले मैं बता दूं कि अगले आवर में जब हम आएंगे तो आपके लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट भी लेकर आए हैं, जहां पे आपके पास मौका है वाउचर्स जीतने का, वो भी बर्गर किंग के।
1: तो
0: आज नो डाइट डे है, आज नो डाइट डे एंजॉय करने के लिए सीधा बर्गर किंग आप जा सकते हैं इन वाउचर्स के साथ, इनको रिडीम कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मगर जो मुद्दा मैंने उठाया उसके बारे में आपको ओपिनियन आप बता दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या जंक फूड खाकर वेट लॉस किया जा सकता है, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब भेज दीजिए 3311063 पर। और अगले आवर में हम कॉन्टेस्ट शुरू करेंगे, साथ ही साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे, मगर आपका रिस्पांस मुझे चाहिए हाँ या ना में, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास
2: रेडियो

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।
3: ए बच्ची, क्या कर रहे ली, किधर जा रहे ली?

0: मेलोडी की आवाज में डार्लिंग्स मूवी का गाना हम सुन रहे थे, और जैसे ही गाने का नाम भसड़, यहाँ पे भी भसड़ मची हुई है। मैंने एक सवाल क्या पूछ दिया, जनता के बीच में बवाल मच चुका है।
1: yes.
0: कशिश स्टूडियो के दीवार में सर मारने लग गई कि क्या हो गया ये?
1: क्या ये क्या बोल दिया यार सुदेव, ऐसे कैसे हो सकता
0: बाहर
1: है?
0: बाहर जाके मैंने तनीषा से पूछा, तनीषा बैठे बैठे फिसल के गिर गई। ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही है, लोग बावले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हलचल मच चुकी है यहाँ पे। मैंने पूछा था कि क्या हम जंक फूड खा के वेट लॉस कर सकते हैं या नहीं, और जनता ने अपना जवाब जो है भेजा है। जनता ने बोला है, अबरार भाई ने बोला है कि नो, शिव भाई ने बोला है नो, और उसके साथ साथ सीमा जी ने बोला है नो, इसरा मोहम्मद ने बोला है नो,
1: नो,
0: और प्रिंसन भाई ने बोला है यस। यस एक बार नहीं, दो बार यस बोला है।
1: देखिए प्रिंसन भाई, दो बार यस बोलने से जो है आंसर यस नहीं हो जाएगा।
0: मैं प्रिंसन भाई को सपोर्ट करता हूँ।
1: क्यों?
0: आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, आप लोग ध्यान से सुनो कि जंक फूड खा के भी वेट लॉस हो सकता है।
1: देखो आप ना
0: ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वेट लॉस कब होता है? जब हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में जंक फूड भी खाओ, चाहे वो पिज्जा हो, चिप्स हो, बर्गर हो, अगर वो तुम कैलोरी डेफिसिट में खाओ तब भी वेट लॉस होगा। वेट लॉस का साइंस यही कहता है कि कैलोरीज जो इन होती हैं, जो हम लेते हैं, वो कम होनी चाहिए और कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। तो वेट लॉस तो होगा, मगर यहाँ पे कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। ठीक है, अब क्या है ट्रेड ऑफ्स? ये एक हेल्थी मेथड नहीं है।
1: क्यों?
0: क्योंकि तुम्हारे हंगर एंड क्रेविंग्स बढ़ेंगे, क्योंकि जंक फूड में फाइबर नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, तुम ज्यादा जल्दी हंगरी फील करोगे, तो इस डेफिसिट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिशन ऑब्वियसली पुअर होगा ही, हम वेट जरूर लूज कर लेंगे मगर न्यूट्रिएंट्स लैक करेंगे, जो हमारे एनर्जी को, स्किन को, हेयर को, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। मसल लॉस का रिस्क भी है, हेल्थ पे ओवरऑल इम्पैक्ट आ जाएगा। वेट तो तुम्हारा कम हो जाएगा शायद, मगर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और गट हेल्थ सीधा अलग लेवल पे प्रॉब्लम्स की ओर चला जाएगा। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग, वेट लॉस इज पॉसिबल इवन इफ यू ईट जंक फूड, बट होलिस्टिकली इट इज नॉट गुड फॉर यू। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। स्मार्टर अप्रोच क्या हो सकता है? अगर आपको वेट लूज करना है मगर जंक फूड भी नहीं छोड़ना, तो 80-20 का आप रेशियो रख सकते हो। 80% होल फूड्स खाओ, जैसे एग्स, चिकन, दाल, राइस, वेजीज। 20% आप अपने कंफर्ट फूड, जंक फूड जो है खा सकते हो, बस आदत नहीं बननी चाहिए। जैसे कि मुझे बीच में आदत लग गई थी, अभी भी छोटी छोटी आदत है, लगी हुई है, ज्यादा गई नहीं है, कि मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ एग पफ्स खाता हूँ। वो क्रेविंग्स के लिए खाता हूँ, तो कुछ टाइम वो खाता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ बहुत टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम खाता हूँ। तो उसको आदत मत बनाइए, कभी कभी आप कर सकते हैं, बट हाँ, जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब है, हाँ आप कर सकते हो, मगर क्या वो करना चाहिए? नहीं।
1: टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मत ही करिए। स्टार बना हुआ है ऊपर।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं,
1: yes.
0: तो सवाल पूछने के लिए देखिए मैं तो तैयार हूँ। कशिश आप तैयार हैं?
1: मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अपनी कुर्सी की पेटी जो है वो बांध ली है, ताकि मैं जो है उछल के आंसर ना दे दूं, और बर्गर किंग का जो अमेजिंग वाला वाउचर है वो कहीं मैं ना ले जाऊं।
0: तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में गानों के उस पार हम आएंगे सवाल पूछने के लिए। आप भी तैयार बैठिए, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास।
0: अयान लाल और श्रेया घोषाल की आवाज में मातृभूमि मूवी का गाना। इस गाने में ना आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत हो, बार बार बताते मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ,
1: मैं हूँ,
0: ठीक है भाई तुम ही हो, और नहीं तो क्या है।
1: अब तुम ही
0: स्टे ट्यून्ड जी बिंदास।
2: मेरी आंखें खुलती है सुबह तुमसे होती है।

0: एसपीबी की आवाज में
1: डिफरेंट फैन बेस ब्रो.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हम आपके हैं कौन मूवी का गाना. और यार एक टाइम पे सलमान भाई के जितने भी गाने थे वो एसपीबी सर गाया करते थे.
1: यस, मुझे ना मुझे बहुत लंबे समय तक लगता था कि सलमान खान की आवाज है. एंड ना मैंने कपिल शर्मा शो पे देखा था तो उसमें सलमान खान से बात कर रहे थे तो वो बोलते कि एसपीबी सर जो है ऐसे ऐसे जो है गाते हैं जैसे कोई उनका मसाज कर रहा हो.
0: एसपीबी सर के बारे में बहुत ही मजे में और काफी इमोट करते थे वो लाइंस को.
1: yes.
0: उनके बहुत सारे गाने हैं. मतलब मैंने तो ज्यादा उनके तमिल गाने सुने हैं. और मतलब जब भी हमने गाने सुने उनके जिस तरीके से वो गाते हैं, जैसे उनका एक बहुत ही फेमस गाना है मलरे मौनमा करके. तो नॉर्मल गाना ऐसा होता है मलरे मौनमा तो, बट एसपीबी जब वो गाते हैं तो मलरे मौनमा मौना में
1: अमेजिंग. एंड देखिए आप सब ना अभी हमें देख नहीं सकते, मैं देख पा रही हूँ सुदेव के शोल्डर्स भी जो है गाने के साथ साथ आगे मूव हुए. एंड जो सुन रहा है उसके भी शोल्डर आगे अपने आप मूव होते हैं. ये मैजिक है ब्रो म्यूजिक का.
0: ये होता है ये भाई. जब भी हम मतलब एसपीबी की बात करें, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में बात करें, एसपीबी की बात करें, एक चीज यहाँ पे हमें माननी पड़ेगी कि मैंने शायद ही उनसे अच्छा एक आर्टिस्ट और इंसान जो एक साथ हो देखा होगा, क्योंकि इतने अच्छे इंसान थे वो. उनका एक बहुत ही फेमस वीडियो है जहाँ पे वो रफी साहब के गाने के बारे में बोलते हैं, दीवाना हुआ बादल. वो बोलते हैं कि यार ये गाना सुन के मैं खुशी के आंसू रोता था कि ये कैसे गा सकता है कोई इंसान.
1: yes, exactly.
0: और वो कहते हैं कि सी इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गुड सिंगर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. एक अच्छा कलाकार हमेशा एक अच्छा इंसान होता है, उसके बाद ही उसकी जो कला है
1: yes.
0: वो ऊंचाइयों तक
1: पहुंचती है और उसकी परछाई जो है उसके आर्ट में दिखती है.
0: बिल्कुल.
1: और इन सब के उसमें आर्ट में वो दिखता है कि कितने अच्छे इंसान है सब.
0: और यहाँ पे एक और चीज देखने लायक ये है कि अभी हम नो डाइट डे की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जब भी जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, स्पेशली जो वोकलिस्ट होते हैं, वो बहुत अपना डाइट का ख्याल रखते हैं. एसपीबी ऐसा कुछ नहीं करते थे. जो मनाया खाते थे, जो मनाया पीते थे और कुछ भी करते थे. तो मैं हमेशा से सोचता था यार भाई इस इंसान ने इतने साल तक कैसे अपने वॉइस को मेंटेन करा. मेरे पास एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि उनकी अच्छाई इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनके सारे जंक फूड डाइट ना रखना ये सब उनके अंदर की ह्यूमैनिटी इतनी बड़ी थी ना कि उनका टैलेंट मेंटेन कर गया अपने आप.
1: अब देखिए जब आप अपने मन का खाना खाते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं ना.
0: बिल्कुल.
1: बस इसीलिए वो जो खुशी है वो उनके गानों में ऐसे हम तक पहुंच रही थी.
0: देखता ना
1: भाभी तुम खुशी हो गए सारा.
0: मगर यहाँ पे एक सवाल लेकर आए हैं हम और सवाल काफी इंपॉर्टेंट है. उस सवाल का सही जवाब दो, आपके पास मौका है जीतने का बर्गर किंग के Vouchers.
2: Presented by Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King. Taste is King.
0: हमने हैमबर्गर का नाम सुना है.
1: Yes.
0: ठीक है, हैमबर्गर का नाम सुना है, मगर इस नाम से जुड़ा हुआ एक शहर भी जर्मनी नाम के एक कंट्री में है. तो उस शहर का नाम क्या है ये आपको बताना है हमें. बहुत ही सिंपल सा सवाल है. इससे सिंपल सवाल कुछ हो नहीं सकता.
1: देखो यार इसमें तो आप मुझसे स्मार्ट हो ही सकते हो.
0: और क्या बात कर दी यहाँ पे
1: मुझे भी पता है यार.
0: यस, तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी जो है अभी सवाल का जवाब दीजिए. हैमबर्गर से मिला जुला एक नाम, एक शहर का नाम है जर्मनी में, उस शहर का नाम क्या है. तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी भेज दीजिए हमें 3311063 पर. सही जवाब अगर आप देंगे तो आपके पास मौका है जीतने का बर्गर किंग के बहुत ही बढ़िया वाउचर्स. और यही जबरदस्त बात के बाद एक काम करते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: यार ये फिर से घास फूस. बट बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस. अरे यार फिर से ककड़ी. ना स्वाद है ना कुछ है. But chips sounds like this. ये करेला क्यों हेल्दी है यार. कड़वा भी है. जूस भी पीना उसका. But hot chocolate sweet भी है. Soothing भी है. You know what? Sometimes it's okay. एक ही तो जिंदगी है. खाओ पियो ऐश करो.
3: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ बिंदास.
4: प्रेजेंटेड बाय
3: स्पाइसी क्रिस्पी एंड इररेसिस्टिबली सैटिस्फाइंग द बर्गर किंग स्पाइसी पनीर वॉपर. बर्गर किंग टेस्ट इज किंग.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. What's up?

0: केके और वसुंधरा की आवाज में मैं हूं ना मूवी का गाना हमने सुना। काफी बढ़िया गाना, काफी एनर्जी है इस गाने में। और कशिश तो भाई मतलब अलग लेवल पे चली गई।
1: आपने एक आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया इसमें,
0: किसका?
1: गिटार, क्योंकि गिटार। दोनों आर्टिस्ट से ज्यादा तो गिटार जो है वो सुनाई दे रहा है इस गाने
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सही बात कही आपने।
1: मतलब अमृता के से बाल भी
0: बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। मतलब कल्ट मूवी है भाई, मैं
1: यस यस यस
0: कल्ट मूवी है, बार बार देखो मजा आ जाता है तुम्हें। और यहाँ पे हम जो है एक सवाल पूछकर बैठे थे कि हैमबर्गर जो है बहुत ही फेमस एक डिश है अमेरिका में, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो अमेरिकन वो है, बट उसके रूट्स जो हैं जर्मन है। और जर्मनी में एक शहर का नाम भी उससे सिमिलर है, कौन से शहर का नाम ही हमने पूछा था, जवाब हमारे पास आए तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें मैसेज किया है सीमा जी ने बोला है इंग्लोस्टाड इन जर्मनी, डॉचलैंड करके। यार एक तो जर्मनी में कुछ जगह ऐसी हैं जिनका नाम बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शिवा भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने हैमबर्गर बोला है। जी मेरा सवाल हैमबर्गर था, बट कोई बात नहीं। मुझे इजाज भाई ने मैसेज किया है हैमबर्ग सिटी करके, और इसरा ने मुझे मैसेज किया है हैमबर्ग करके, अजय जी ने मुझे मैसेज किया है हैमबर्ग करके, और बॉस्को बॉस्को सब ब्रो क्या हाल है, बहुत टाइम हो गया, कितने हो यार, कभी आ जाया करो यहाँ पे, दर्शन दिया करो। बॉस्को कशिश को याद होगा, मैं और कशिश जो है बॉस्को के साथ गए थे बाहर,
1: हम बीच क्लीन अप
0: ड्राइव के लिए। तो थैंक यू सो मच ब्रदर मैसेज करने के लिए। और उसके साथ साथ मुझे मुकुल भाई का मैसेज भी आया है, मुकुल भाई ने भी बोला है सिटी इज हैमबर्ग, और मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने भी बोला है सिटी इज हैमबर्ग, और ऑलमोस्ट सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको हिस्टोरिकल तरीके से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो कहाँ से आया है हैमबर्ग? बेसिकली अमेरिका में 19th सेंचुरी में जर्मन इमिग्रेंट्स गए थे जो हैमबर्ग स्टेक जो है यूएस लेके गए थे, और 1900s के लेट होते होते होते वो एक सैंडविच की ओर इवॉल्व हो गया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार अमेरिका जो है अमेरिका में हुआ है हैमबर्गर का जन्म जो है, मगर उसका जो ओरिजिन है एक्चुअल ओरिजिन है वो जर्मन रूट से है। तो जर्मनी में एक पॉपुलर डिश होता था हैमबर्ग स्टेक, जो मिंस्ड सीजन्ड बीफ होता था, उसे खाते थे 18th और 19th सेंचुरी में। जब यहाँ से इमिग्रेंट्स अमेरिका गए तो वो स्टेक लेकर गए वहाँ पे और उसे मेन्यू में बेचा जाता था, और उस टाइम पर भी वो एक हाई एंड डिश हुआ करता था rather than a fast food.
1: Yes.
0: और fast food बनने के लिए भी उसे बहुत टाइम लगा। 1885 to 1900 के बीच में जाके उस पैटी को दो ब्रेड के बीच में रखा गया ताकि पोर्टेबल और वर्किंग क्लास लोगों के लिए फूड जो है दिया जा सके, और वहां से धीरे धीरे धीरे जो है हैमबर्गर जो है इस एक रूप में आ चुका है।
1: Yes.
0: और जैसे कि मैंने बोला था कि हैमबर्ग सिटी जो है जर्मनी में, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच आपने मैसेज किया। इनमें से विनर कौन होगा वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विनर को हम अनाउंस करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे गाना जो है आपका वेट कर रहा है रॉकस्टार मूवी का, और हो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, जहाँ हम लाइफ को थोड़ा सीरियस नहीं बल्कि थोड़ा ऑनेस्टली लेते हैं. मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि भाई हर दिन क्यों लाइफ को सीरियसली लेना है. आज एक ऑनेस्ट सवाल है आपसे कि वीक अभी थोड़ा सा और बचा है, आज का दिन है, कल का दिन है, प्रॉपरली अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दो दिन और है, लेकिन थकान ऑलरेडी फील हो रही है. कभी आपने नोटिस किया है कि संडे जब नया वीक स्टार्ट होता है तो हम फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, न्यू रूटीन, हेल्दी ईटिंग, जल्दी सोना, प्रोडक्टिव रहना, और वेंसडे यानी कि आज तक बस सर्वाइव कर रहे होते हैं. लेकिन शायद प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं. सो हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, अपडेट्स, स्क्रोलिंग, और ब्रेन को लगता है कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा होता है. सो बॉडी की जो बैटरी है वो चार्जर से चार्ज हो जाती है, ब्रेन की बैटरी साइलेंस से चार्ज होती है. सो अगर आज आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो तो डोंट फील गिल्टी अबाउट स्लोइंग डाउन. कभी कभी एक कप अच्छी चाय, 10 मिनट का शांति या फिर फेवरेट गाना, ये भी थेरेपी हो सकती है. लाइफ को परफेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, बस मैनेजेबल बनाना ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट आई फील, आप भी ये कर सकते हो. और इसी के साथ थोड़ी देर में हम बात करेंगे अमीर कप सेमीफाइनल की कि भाई क्या चल रहा है. और इसी के साथ यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।

0: सो फुटबॉल फैंस, कल का मैच सिर्फ मैच नहीं था, फुल इमोशनल रोलर कोस्टर था। अमीर कप 2026 सेमीफाइनल में अल गफारा और अल वखरा के बीच में जो क्लैश हुआ उसने फैंस को लिटरली नो एज पे बिठा दिया था। नॉर्मल टाइम में टेंशन ऑलरेडी हाई थी, पर फिर मैच गया पेनल्टी शूट आउट तक। और ऑनेस्टली पेनल्टी शूट आउट फुटबॉल का वो मोमेंट होता है जहाँ पर स्किल के साथ मतलब हर चीज टेस्ट हो जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। एक किक और पूरी क्राउड की हार्ट बीट चेंज। फाइनली अल गराफा ने 3-2 से विन सिक्योर किया और फाइनल के पहला जो स्पॉट था वो बुक कर लिया। और सोशल मीडिया पे भी फैंस का जो रिएक्शन था वो बहुत क्रेजी था। मीम्स, सेलिब्रेशन, इमोशनल रिएक्शन। फुटबॉल कतर में स्पोर्ट नहीं, मतलब पूरा कल्चर ही बन जाता है। और अब सबकी नज़र फाइनल पर है क्योंकि अमीर कप का फाइनल सिर्फ ट्रॉफी नहीं, लेगेसी का गेम होता है। सो क्या लगता है आपको कि कौन जीतने वाला है इस बार? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कूल रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

दिस अपडेट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि हम सब मतलब लाइफ में यू नो लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहते हैं. सो बेसिकली स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली ग्रुप में एक फाइन कलेक्टर जरूर होता है. सो मीटरश ऐप में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है और ऑनेस्टली काफ़ी प्रैक्टिकल है. अब आप फैमिली फ्रेंड्स या फिर ट्रैफिक वायोलेशन भी पे कर सकते हो. सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई आपको बताना तो बनता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बेसिकली इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है. ऐप ओपन करो, डिटेल्स ऐड करो और पेमेंट कंप्लीट. कतर स्लोली हर सर्विस को डिजिटल कन्वीनियंस में कन्वर्ट कर रहा है. और ऑनेस्टली ये फीचर सिर्फ पेमेंट का नहीं है, ये एक पैटर्न शो करता है. टेक्नोलॉजी अब इंडिविजुअल यूज से फैमिली इकोसिस्टम तक मूव कर रहे हैं. पहले पेपर वर्क होता था, लंबी लंबी लाइंस होती थी, अब एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन. और इस टाइप के जो फीचर्स हैं इनका बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है, टाइम सेव करना, स्ट्रेस कम करना और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा दिखाना. डिजिटल लाइफ में ये बेस्ट पार्ट है और ये तब अच्छी लगती है जब वो एक्चुअली लाइफ को ईजी बना दे, जैसे कि ये वाली ऐप. ठीक है, सो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी है और साथ ही साथ एक किताब जो मैं आज आप लेकर आई हूँ आपके लिए. वी विल टॉक अबाउट दैट. आप इस ब्यूटीफुल से गाने को एंजॉय कीजिए. सुंदर रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: थोड़े दिन पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस बुक जिसका नाम है द ब्रिजेस ऑफ मेडिसिन कंट्री. सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है.
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: थोड़े दिन पहले जब मैं इस किताब की बात कर रही थी तो मैं इसको कंपेयर कर रही थी आज की लाइफ से, जहां पर हम हर दिन हर मिनट किसी ना किसी इंसान से जुड़े हुए होते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर से. अगर मैसेज पे ब्लू टिक आ गया और रिप्लाई नहीं आया तो हम उतने में ही गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन ये वो टाइम था जब इस किताब में दिखाया गया है कि लोग सालों में सिर्फ 4 दिन मिल पा रहे हैं हस्बैंड वाइफ. और आज फिर एक बार इसी किताब की बात करते हैं, उस बुक की जो लाउड नहीं है लेकिन क्वाइटली दिल में रह जाती है. आज उसके कैरेक्टर की बात करते हैं, उसके मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशनल लेयर की बात करते हैं. इस बुक का एक पार्ट है जहाँ पर जो उनकी वाइफ है जिसका नाम फ्रांसिस्का है, रियलाइज़ करती है कि लाइफ में कभी कभी सब कुछ रॉन्ग टाइम पर मिलता है और शायद इसीलिए ज़्यादा रियल लगता है. हर कनेक्शन हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए नहीं होता, कुछ कनेक्शंस ना सिर्फ आपको चेंज करने के लिए होते हैं. सो बुक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है जब दोनों कैरेक्टर्स सिर्फ एक नॉर्मल ड्राइव पर जा रहे होते हैं. नो ड्रामेटिक कन्फ्यूजन, नो बिग बैकग्राउंड म्यूजिक, बस साइलेंस, कॉन्वर्सेशन, बारिश और सड़क. और वहीं सिंप्लिसिटी जो है वो सीन को अनफॉरगेटेबल बना देती है. कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा शांत होते हैं. और इस किताब की बिगेस्ट लेसन भी शायद यही है कि लाइफ सिर्फ चॉइसिस का नाम नहीं है, उन चॉइसिस का कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनके साथ जीने का नाम भी है. फ्रांसिस्का के पास ना चांस था सब छोड़कर नई लाइफ चूज करने का, लेकिन उसने क्या चूज किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसी वजह से ये स्टोरी जो है वो फिल्म कम और रियल लाइफ ज़्यादा लगती है. रियल लाइफ में प्यार ना हमेशा ईजी नहीं होता, और शायद इसी रियलिज्म की वजह से इतने सालों बाद भी लोग इस किताब को याद रखते हैं. एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई कितनी खूबसूरत किताब है यार, ये आपको एक बार में न जाने क्या क्या सिखा देती है. बाय द वे आई विल बी राइट बैक, आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. ये था बुक इन द फोकस.
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो लगातार दो बार जीतने से चेन्नई की जो उम्मीद है वो वापस से नो कायम हो गई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बेसिकली हर दिन मैं आपको अपडेट्स देती हूँ कि मैचेस में क्या चल रहा है। सो यस्टरडे वाज दिल्ली वर्सेस चेन्नई। सो स्कोर जो था वो बहुत ही कम था, जो टारगेट था वो काफ़ी कम था। सो दिल्ली ने बनाए थे 155 सात विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। फिर चेन्नई आई और उसने 159 रन बनाए दो विकेट के नुकसान पर 17 ओवर 3 बॉल में। अब आज बात करने वाले हैं कि आज के मैच में क्या होगा, क्योंकि आज है हैदराबाद वर्सेस पंजाब का मैच, शाम को 5 बजे शुरू होगा कतर टाइम के हिसाब से। लेकिन कल के मैच की एक बात है जो आपसे करनी थी। सो दिल्ली और चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस जीत से जो चेन्नई उसने प्लेऑफ की उम्मीदें जो है वो कायम रखी और दिल्ली के पास भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। लेकिन शर्त यह की है कि टीम को बाकी के सारे मैचेस अब जीतने होंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन पॉइंट टेबल में भी कोई चेंजेस नहीं आए और यहां पर हैदराबाद के पास टेबल टॉपर बनने का मौका भी है। तो आज क्या होगा, आज थोड़ी देर में बात करते हैं। सुंदर रेडियो ऑल अवेलेबल, बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सो वी वर टॉकिंग अबाउट मैचेस और यहाँ पर पैट कमिंस की जो टीम है वो पॉइंट टेबल के थर्ड नंबर पर है और उसके पास 10 मैचेस में से 6 जीतने के साथ 12 मार्क्स हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, उनके पास यू नो पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुँचने का भी मौका है और टीम को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ जो हार झेलनी पड़ी थी अब उसे 2 होम और 2 अवे मैच खेलने हैं और यहाँ से टीम हर जीत के साथ प्लेऑफ के करीब पहुँच सकती है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंजाब. भाई श्रेयस अय्यर की टीम पॉइंट टेबल के टॉप पर, टीम के पास 9 मैचेस में से 6 जीतने के बाद जो पॉइंट्स हैं वो हैं 13. एक मैच नो रिजल्ट था, ऐसे में एक और जीत पंजाब को प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंचा देगी. यूजुअली होता क्या है, 16 पॉइंट्स के बाद टीम जो है टॉप 4 में फिनिश करती है और पंजाब को भी 3 मैच जो हैं वो अभी और खेलने हैं. अब टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स तो आपको पता ही हैं, ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड पे KL राहुल हैं, अभिषेक शर्मा, हैनरिक क्लासन, लेकिन अभी यहाँ पर पर्पल कैप लीडर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है. भुवनेश्वर कुमार, अंशुल कंबोज और कगिसो रबाडा. सो वी विल सी कि भाई कौन जीतता है आज के मैच में, शाम को ही पता चलेगा, लेकिन उसकी सारी लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ मुस्कान, सुन रहे हैं आप स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Yaar, ye phir se ghas poos. But. बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस. अरे यार फिर से ककड़ी, ना स्वाद है ना कुछ है. बट चिप्स साउंड्स लाइक दिस. ये करेला क्यों हेल्दी है यार, कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका. बट हॉट चॉकलेट स्वीट भी है, सूदिंग भी है. यू नो व्हाट, समटाइम्स इट्स ओके, एक ही तो जिंदगी है. खाओ पियो ऐश करो.
3: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ.

भाई 2-3 दिन हो गए फैशन का बिगेस्ट नाइट तो हो चुका है और इंटरनेट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बेस्ट ड्रेस्ड कौन था। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। मेट गाला 2026 में इस बार सिर्फ आउटफिट्स नहीं बल्कि पूरा स्टोरी टेलिंग देखा गया था। कुछ स्लेब्स लिटरली वॉकिंग आर्ट लग रहे थे तो कुछ को देखकर इंटरनेट ने बोला कि थीम पढ़ा भी था। फैशन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल बेस्ट लुक्स वो थे जिन्होंने सिर्फ एक्सपेंसिव आउटफिट नहीं पहने बल्कि थीम को अंडरस्टैंड किया। सो इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया पर ऑडियंस का जो टेस्ट

0: है वो भी चेंज हो रहा है. पहले फ्लैशी आउटफिट्स वायरल हुआ करते थे, अब सटल डिटेलिंग और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें जो है हम लोगों को पसंद आ रही हैं. सो बेसिकली एक टाइम था जब लोगों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन आज के टाइम पे हर चीज़ लोगों को समझ आती है. और ऑनेस्टली मेट गाला का फन भी यही है कि थोड़ा फैशन, थोड़ा कियोस और थोड़ा मीम मटेरियल. बाय द वे, हु इज़ योर फेवरेट यू नो मेट गाला लुक दिस टाइम? मुझे बाय द वे करण जौहर का जो ऊपर से वो
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. और वक्त हो गया है जोहर की अजान का.

0: मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आई वॉज वॉचिंग द डेविल वेयर्स पराडा, क्योंकि सेकेंड पार्ट आ गया था और मैंने फर्स्ट ही नहीं देखा था, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट देखा. पर मेरे दिमाग में ना बस पूरा टाइम एक ही चीज़ घूम रही थी, एक फन इमेजिनेशन कि अगर ये इंडियन शो होता, इंडियन वर्जन इसका बनता तो कौन कास्ट होता. एंड आई वॉज लाइक कि भाई इंटरनेट का फेवरेट आंसर क्या है. एंड आई वॉज सर्चिंग ऑल ओवर द इंटरनेट और मुझे समझ में आया कि भाई जो मेरे दिमाग में है वही सबके दिमाग में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और इसका आंसर था रेखा एज मिरांडा प्रेस्ले. एंड आई वॉज लाइक सीरियसली ये कितना अमेजिंग लगता है, मतलब रेखा इन शॉर्ट हेयर और वो बॉसी ड्रेसेस, मतलब शायद बेस्ट डिसीजन होता और ऑनेस्टली परफेक्ट चॉइस भी है क्योंकि वहाँ पर एटीट्यूड है, साइलेंस है, पावर है और वो सिर्फ रूम में एंटर नहीं करती, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है. सो उनकी जो असिस्टेंट है उसका रोल प्लेयर करती करीना खान कपूर. मतलब वो जो लुक है ना उनका इतना सूट करता है उन पर क्योंकि उसमें वो मॉडर्न कॉन्फिडेंस है, शार्पनेस है और फैशन वर्ल्ड के बॉस वाइब जो है ना वो दे सकती है और इंटरनेट ने नाम भी यही दिया. बट इसी के साथ जो एक और कैरेक्टर है जिस टाइम पर आपने देखा होगा कि ऑल द टाइम ही इज़ वेरी वेरी यू नो कॉन्शियस अबाउट द वर्क, वो भी बताऊंगी कि कौन है. और अगर बॉलीवुड वर्जन इसका बनता तो इसमें शायद यही सारे नाम होते, फैशन से ज़्यादा ड्रामा होता. लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑडियंस को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि लोगों ने एक्चुअली इसके आंसर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाले हुए थे क्योंकि फैशन प्लस बॉलीवुड प्लस स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ का मतलब है परफेक्ट एंटरटेनमेंट कॉम्बो. मुझे लगता है इंडिया में भी एक ऐसी मूवी तो ज़रूर बननी चाहिए. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या है रेखा और करीना कपूर जैसे कैरेक्टर्स डेविल्स वेयर्स पराडा में सूट करते हैं. बाय द वे अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो बताओ मुझे क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले ही देखी है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: धूप

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: भाई कातर की गर्मी में एक चीज ना फैशन से ज्यादा नेसेसिटी बन चुकी है, विच इज सनग्लासेस। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। पहले सनग्लासेस का मतलब क्या होता था? स्टाइल, एयरपोर्ट लुक, सेलिब्रिटी वाइब। लेकिन अब क्या होता है, स्पेशली हमारे जैसे जगहों पर जहाँ पर हम रहते हैं कातर में, वेदर में सनग्लासेस आई प्रोटेक्शन बन चुका है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अभी से कातर में आफ्टरनून सन कितना शार्प फील होता है। कार से ऑफिस जाना हो, मेट्रो तक वॉक करना हो या इवन सिग्नल क्रॉस करना हो, पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सनग्लासेस। आईज ना कॉन्स्टेंटली हार्श सनलाइट फेस कर रही हैं और डॉक्टर्स भी हमेशा ये बोलते हैं कि एक्सट्रीम यूवी एक्सपोजर डायरेक्टली इफेक्ट करता है आई स्ट्रेन्स को, हेडेक होता है, ड्राइनेस होती है और लॉन्ग टर्म में विजन इशू भी होता है। सो स्किन की तरह आंखों को भी सन प्रोटेक्शन चाहिए। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोगों को आजकल पता है कि सनग्लासेस अकॉर्डिंग टू यूवी प्रोटेक्शन आने लगे, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू स्टाइल, ठीक है। सो पोलराइज्ड लेंसेज, यूवी 400 प्रोटेक्शन और एंटी ग्लेयर लेंसेज, मतलब ये सब मार्केट में है और ये सब टर्म्स अब जनरली इंपॉर्टेंट हो गए हैं और जहां हम रहते हैं वहां तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सनग्लासेस पहनते हो ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 12% बढ़ जाता है, ऐसा रिसर्च कहती है, 12%, ठीक है। इवन इफ लाइफ मेसी हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत आराम से बढ़ जाता है। सो 12% कॉन्फिडेंस बढ़ा और आंखों को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सो चश्मा जरूर लगाया करो क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप ना।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

आपको लगता है कि लाइफ में कोई बड़ी टेंशन तो है ही नहीं, फिर सब कुछ सॉर्टेड तो है, बट स्टिल क्यों इतना यू नो स्ट्रेस हो रहा है? सो कभी आपने फील किया है कि पूरा दिन फिजिकली ज्यादा कुछ किया नहीं लेकिन मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हो आप, और फिर हम सोचते हैं कि यार इतनी थकान हो क्यों रही है? उसका रीजन कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता, उसका रीजन होता है माइक्रो स्ट्रेस, मतलब छोटी छोटी चीजें, फोन के नोटिफिकेशन से लेके लेट रिप्लाइज से लेके ट्रैफिक, बैकग्राउंड नॉइसेस, ऑफिस में चल रही छोटी मोटी पॉलिटिक्स, बस यही आपको परेशान करती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो इंडिविजुअली स्मॉल कलेक्टिवली एग्जॉस्टिंग हो जाता है, और ब्रेन का प्रॉब्लम क्या है, वो हर छोटी चीज को प्रोसेस करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉफी पी रहे हो, साथ में एक मैसेज आ गया, और फिर मेल भी आ गया, और फिर किसी का कॉल भी आ गया बहुत ही अर्जेंट सा। अब बॉडी चेयर पर रिलैक्स्ड होती है, ब्रेन जो है वो मैराथन कर रहा होता है भाई, और इस वजह से आजकल लोग फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली टायर्ड ज़्यादा फील करते हैं। फोकस, इमोशनल एनर्जी, पेशेंस सब खत्म हो रहा है, इसीलिए कभी कभी ना 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, फॉर योर कॉफ़ी, फॉर योर स्क्रॉलिंग और वट एवर यू लाइक। सो आई विल से कि बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक अगर दिन में 2-3 बार ले भी लोगे ना तो कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत थकान हो रही है तो बस 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

थर्सडे फॉर मी आज बस थोड़ा सा ही बचा है और कल है थर्सडे. सो आज कल के शो को रैप करते टाइम मैं एक छोटी सी बात जो शायद हर दिन आपके लिए लेकर आती हूँ. हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है भाई. बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि कल सुबह 10 बजे मैं आ जाऊँगी लाइफ मस्त है लेकर. हम सब लाइफ में ना बहुत कुछ चेस कर रहे होते हैं, बेटर करियर, मोर मनी, बिगर गोल्स, और इस रेस में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं. तो अच्छे मोमेंट्स हैं वो रेयरली यू नो हम इंजॉय करते हैं. सो कभी कभी ना बेस्ट मोमेंट क्या होते हैं, लेट नाइट की चाय, किसी दोस्त के साथ एक रैंडम कॉल, या फिर कार में एक फेवरेट गाना, या फिर घर आके सुकून से आराम से बैठना. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ को बहुत सुकून देती हैं, कभी ट्राई करके देखिएगा. पहले ना मैं भी इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भागती थी, बट दीज डेज आई एम जस्ट रिलैक्सिंग. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, घर पे बैठ के जो सुकून से आप चाय पीते हो ना, उसका भी एक अलग मजा है. बाय द वे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चाय तो रहने ही दीजिए. आप कुछ ऐसा पीने की कोशिश कीजिए जो आपको ठंडक दे, जैसे कि आमपना. भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस टाइम पर तो आपको किसी भी हाइपरमार्केट में ना हर तरह की सब्जियां और चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो, शरबत बना सकते हो. सो आई विल से कि उन्हें ट्राई कीजिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: यार ये फिर से घास फूस।
3: बट
2: बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस। अरे यार फिर से ककड़ी, ना स्वाद है ना कुछ है। बट चिप्स Sounds like this. ये करेला क्यों हेल्दी है यार, कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका। But hot chocolate, sweet भी है, soothing भी है। You know what? Sometimes it's okay. एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो।
0: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं। Let's celebrate No Diet Day on Khao Bindaas.
4: Presented by
0: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king.
5: Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

The Yellow Diary is a beautiful rendition of Tere Jaya Ho, this is the only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Agyeji, aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon, meri jaan. May 6th, aaj Wednesday ka din, weekend se bahut nazdeek, to aise khushi ka mahol jo hai, wo badhta hi ja raha hai. क्या सुंदर गाना है मतलब somehow it is very peaceful I cannot tell you the number of times I have listened to this track जब ये आया था मतलब repeat पे crazy तरीके से सुनती थी मैं काटे मूवी से ये ब्लॉकबस्टर गाना मैंने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था आखिर वही किए सजदे जहां सर झुकाना रील्स पे ट्रेंड हुआ था और अब मूवी में पहुंच गया है जी हां दिस ट्रैक हैज बीन अडैप्टेड इन दिस मूवी पति पत्नी और वो दो लेकिन हम यहां पे पहले ही सुन लेंगे यस लेकिन ये सारे अमेजिंग गाने तो देखो लाइंड अप है ही और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं बीच में बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपका हालचाल बताएं कैसे हैं आप हाउ हैज द डे बीन सो फार व्हाट्स द मूड फॉर दिस वेडनेसडे 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान Uber!

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Good news movie से beautiful track दिल ना जाने only on Radio Olive 106.3 FM तनिशा आपके साथ Olive Radio चल रहा है यहाँ पर and today we're going to talk about the blue sky theory. Now what is that? No matter how violent the storm is या फिर कितने भी काले बादल क्यों ना आ जाए, the sky is always blue above them, right? वो सिर्फ उसको cover कर देते हैं कुछ वक्त के लिए, but sky always stays the blue. एंड वो जो क्लाउड्स हैं वो सिर्फ वेदर है, यू नो दे आर जस्ट पासिंग थ्रू. सेम वे वो जो ब्लू है वो हमारी रियलिटी है. वी वॉन्ट पीस एट आर कोर, राइट? सो हमारे जो भी इमोशंस हैं ना, लाइक यू आर फीलिंग एंग्शियस या फिर स्ट्रेस हो रहा है, एंग्री है, सैड है, ये सब उन क्लाउड्स की तरह सिर्फ पास कर रहे हैं हमारे थ्रू, यू नो दे आर नॉट गोना स्टे देयर. वो हमारी परमानेंट स्टेट नहीं बन गया है. तो वट एवर यू फीलिंग इन द मोमेंट, उसको ये सोच के मत बैठो कि ये तो परमानेंट स्टेट हो गया यार, मैं तो हमेशा सैड ही रहने वाली हूँ, मैं तो हमेशा एंग्शियस ही रहने वाली हूँ. ऐसे नहीं होता है. इट विल जस्ट गो थ्रू. उन सब इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो एंड जस्ट रिलैक्स अ बिट, यू नो, डीप ब्रेथ लो और इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. हमको आदत है बस ओवर रिएक्ट करने की. बाय द वे, आज उस बारे में भी बात करने वाली हूँ और एक बहुत कमाल की चीज़ लेकर आई हूँ. पर सब कुछ अभी बता दूं? नहीं जी, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता ही है ऐसे वेदर में. तो आइए एंजॉय करते हैं ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: यार ये फिर से घास फूस. बट बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस. अरे यार फिर से ककड़ी. ना स्वाद है ना कुछ है. बट चिप्स साउंड्स लाइक दिस. ये करेला क्यों हेल्दी है यार. कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका. बट हॉट चॉकलेट स्वीट भी है, सूदिंग भी है. यू नो व्हाट, समटाइम्स इट्स ओके. एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो.
2: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ बिंदास.
0: Presented by
2: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King. Taste is king.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
0: In association with
6: Homes Are Us, we complete your home.
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

Tanisha. Tanisha. Rita Sharma aur Zubeen ki awaaz mein Mahi Wave from the movie Kante only on Radio Olive 106.3 FM Tanisha aapke saath Olive Richard chal raha hai yahan par aur bachchon ke liye bahut kamal kamal ki cheeze ho rahi hai is waqt Qatar mein jaise ki 3 to 1 Qatar Olympic and Sports Museum mein free activation zone jo hai wo bachchon ke liye aa gaya hai and bahut sari engaging activities hai wahan par bahut sare games hai full enjoy kar sakte hain so weekdays par so there are different timings okay Sunday Monday Wednesday and Saturday, the timing is 9 a.m. till 7 p.m. आप कभी भी जा सकते हैं. It is absolutely free for kids. And Tuesday को बंद रहेगा. Thursday का time है 9 a.m. से लेकर 9 p.m. तक और Fridays का time है 1:30 p.m. से लेकर 7 p.m. तक. So apart from Tuesday, you can plan to go any day over there. और बहुत बढ़िया engaging activities है. They will also have fun and summer vacations भी चल रहे हैं. तो बढ़िया रहेगा. Along with that, अल मेरकाब मॉल में भी बच्चों के लिए फ्री किड्स एक्टिविटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की गई हैं थ्रू आउट द डे एवरी डे संडे टू वेंसडे का टाइम है 3 पीएम से लेकर 8 पीएम तक का एंड थर्सडे और फ्राइडे का टाइम है 3 पीएम से लेकर 10 पीएम तक और सैटरडे का टाइम है सुबह 10 से 2 और फिर दोपहर में 3 से रात 8 बजे तक सो प्लान कर सकते हैं बच्चों को ले जा सकते हैं मॉल वगैरह जाएंगे तो आपकी शॉपिंग हो जाएगी और बच्चे अपना खेल लेंगे और 3-2-1 म्यूजियम लेकर जाएंगे तो वो तो बहुत कमाल एक्सपीरियंस है दैट वाज माय फर्स्ट एवर आउटिंग बाय द वे जब मैं कतर आई थी वी हैड एक्टिविटी प्लान्ड एंड लिसनर्स के साथ हम वहां गए थे अमेजिंग मजा आ गया था सो जरूर चेकआउट कीजिएगा फिलहाल सुनते हैं बर्फी मूवीज एक खूबसूरत गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में मैं क्या करूं सबका यही सवाल है यार स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल अप ट्रियो बिंदास

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट. ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास. ऑलिव रिचार्ज
2: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी. कमर्शियल बैंक्स 5 million rials ड्रीम बिगर.

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio Ali 106.3 FM. Tanisha आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर और भाई हर जगह आमिर कप की धूम मची हुई है एंड वी हैव गॉट द टीम्स जो कि इस बार फाइनल्स में है दैट इज अल गराफा एंड अल सद के बीच में होने वाला है आखिरी मुकाबला. जी हाँ, 9th मई को जो मैच होने वाला है वो इन दोनों टीम्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा. विच टीम आर यू रूटिंग फॉर, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. 3311 1063 पर फटाफट से मैसेज करो और मुझे बताओ. एंड इफ यू हैवंट सो फार, फटाफट से जाओ हमारे सोशल मीडिया पे, radioalive.qa इज द हैंडल. वहाँ पे वो खूबसूरत सी ट्रॉफी जो हमारे ऑफिस में आई थी यू नो ड्यूरिंग द टूर, वो देखो, चेकआउट करो, बहुत सुंदर है. एंड यू नो द टीम जो भी लेकर जाएगी, सही है यार, गुड लक टू देम, टू बोथ द टीम्स राइट नाउ. आप मुझे बताइए आप कौन सी टीम के लिए रूट कर रहे हैं, मैसेज कीजिए और बताइए. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. चियो बिंदास मेरी जान.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

है बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए. इट इज फुल फैमिली फ्रेंडली और यू नो आप वहाँ पे फूड कियोस्क मिलेंगे तो खाना भी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट बूथ्स हैं, फेस्टिव एटमॉस्फियर, फुल लॉन, मजेदार ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो देरी किस बात की, 9th मई तक ये चलने वाला है और वीकडेज का टाइम संडे टू वेंसडे का रहेगा 4 PM से लेकर 10 PM और वीकेंड्स पे दैट इज आज से लेकर सैटरडे तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक. अगर आपको इसकी टिकट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए स्नूनू एस सिटी पर, वहां पर इसकी टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं. अलोंग विद दैट यू शुड गो ऑन आर सोशल मीडिया radioolive.qa क्योंकि वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट जहां आप जीत सकते हैं डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के टिकट्स. यस, गो एंड चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ओलिव, जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. And let's talk about amygdala hijack. So first of all, what is amygdala? So amygdala is the primitive part of our brain, जो कि हमें एक physical danger से बचाने का काम करता है. Now the problem is कि उसे नहीं पता कि एक email और एक lion attack में क्या difference है. दोनों को सेम तरीके से लेता है और उसी तरीके से हमारे रिएक्शंस निकल के आते हैं. कभी कभी होता है ना, हम रैंडमली बहुत ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, या फिर एंग्री हो जाते हैं, फटाफट से रिएक्शन दे देते हैं और फिर लेटर लगता है कि यार आई कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, मैं और बेहतर रिएक्ट कर सकती थी, आराम से रिएक्ट कर सकती थी, राइट? सो दैट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द अमिग्डाला. और जब अमिग्डाला हाइजैक कर लेता है तो हमारे वो रिएक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं एंड वी डू व्हाट वी फील राइट इन दैट मोमेंट. दैट इज व्हाई दे से कि जैसे ही 6 सेकंड का टाइम आप दोगे अपने रिएक्शन के बीच में, तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि राइट और रॉन्ग में आपको डिफरेंस समझा सकता है, वो एक्टिवेट हो जाता है उस 6 सेकंड में एंड जो अमिग्डाला का रिएक्शन नेगेटिव होने वाला होता है उसको कंट्रोल कर लेता है. That is why they say कि किसी भी चीज़ पे react करने से पहले take at least 6 seconds कि क्या मुझे इस पर react करने की ज़रूरत है. And now I know why they used to say that. मैं हमेशा सोचती थी ये 6 सेकंड का फंडा क्या है, क्या मैजिक होता है. सारा मैजिक हमारी ब्रेन में है यार, समझ रहे हो बात को. Stay tuned to Radio Olive, Jio Bindaas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: With Homes Are Us, we complete your home. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
2: Commercial Bank, we are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: An action hero से जुड़ा नशा only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है अब.
1: Lame jams
0: का सवाल तो मैं पूछती हूँ, लेकिन बताती हूँ कि आज International No Diet Day जो हम पूरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस मौके पर आप जीत सकते हैं Burger King के vouchers अगर आपने दे दिया सही जवाब मेरे lame jams के question का. So गौर से सुनिएगा. Why does green chili hits faster than red chili? Green chili खाने से जल्दी मिर्ची क्यों लग जाती है rather than red chili? This is what you have to tell me. Lame jams है तो जवाब भी वैसा ही चाहिए मुझे. जरा हिंदी में नाम सोच के देखो इसका. Why does green chili hits faster than red chili? फटाफट से जवाब दीजिए 3311063 पर मैसेज करके या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन वाउचर्स फ्रॉम बर्गर किंग. हाँ जी, बहुत डिलिशियस बर्गर्स होते हैं. सो अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा सही जवाब.
2: Presented by
0: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king. And stay tuned to Radio Olive. Chill, bindas.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, I'm Divya Datta. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Olive laga aur ho ja recharge.
7: Olive recharge. Tanisha ke saath.
8: Olive recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
9: In association with
10: Homes Are Us, we complete your home.
11: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
0: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: हमेशा।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में ए दिल है मुश्किल से टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा के साथ। ऑल एवरी चार्ट चल रहा है अब बर्गर किंग के वाउचर्स जीतने के लिए मेरे लेम जैम्स का सही जवाब दे दो और वाउचर्स आपके। सो कुछ आंसर्स मुझे आए हैं, एक मौका मैं और देना चाहती हूँ आपको, तो मुझे फटाफट से बताइए कि वाई डज ग्रीन चिली हिट्स फास्टर देन रेड चिली। ग्रीन चिली खाने से ज्यादा मिर्ची क्यों लगती है rather than red chili? This is what you have to tell me. Now it is lame jam, so logic पे मत जाना। आप जरा चिली के नाम हिंदी में सोच के देखो, शायद जवाब मिल जाए। बताएं मुझे 3311-1063 पर and जीत जाइए Burger King के vouchers।
2: Presented by
1: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying, the Burger King Spicy Paneer Whopper। Burger King, taste is king। Cool song। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo. It's back. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
2: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
3: यार ये फिर से घास पूस. But biryani smells like this. अरे यार फिर से ककड़ी. ना स्वाद है ना कुछ है. But chips sounds like this. ये करेला क्यों हेल्दी है यार. कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका. बट हॉट चॉकलेट स्वीट भी है, सूदिंग भी है. यू नो व्हाट, समटाइम्स इट्स ओके. एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो.
0: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ बिंदास.
1: Presented by
0: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king.
4: Only laga aur ho ja recharge. Olive Recharge.
5: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
1: In association with
6: Homes Are Us. We complete your home.
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल एंड ढेर सारे कमाल के आर्टिस्ट और बहुत प्यारा गाना गोरी गोरी फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और बर्गर किंग के वाउचर्स जीतना चाहते हैं। तो लेम जैम्स का सही जवाब चाहिए। सो आई एम गोइंग टू हैव टू विनर्स टुडे। एक विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, समीरा जी बताइए। बाकी एक और विनर चाहिए मुझे क्योंकि बाकी लोग करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। सोनम जी ने दिया है मुझे करेक्ट आंसर पर अनफॉर्चुनेटली वो कतर में नहीं है, तो आई नीड अनदर विनर। फटाफट से मेरा सवाल सुनो और हिंट भी मैं देने वाली हूँ। लेट्स ट्राई वंस अगेन कि आपको जवाब आता है या नहीं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज ग्रीन चिली हिट्स फास्टर देन रेड चिली। जो ग्रीन चिली है उससे ज्यादा मिर्ची क्यों लगती है रादर देन रेड चिली। अब हिंट ये है कि ये जो चिली है ग्रीन एंड रेड, इन दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एक के नाम से आपको जवाब आ ही जाना चाहिए। इट इज लेम जैम्स, प्लीज इसका ध्यान रखिए। जो भी मुझे लॉजिक्स बता रहे हैं वो काम नहीं करेंगे यहाँ पे मेरी जान। सो लेम जैम्स के तरीके से सोचिए, व्हाई डज ग्रीन चिली हिट्स फास्टर देन रेड चिली। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: प्रेजेंटेड बाय स्पाइसी क्रिस्पी एंड इररेसिस्टिबली सैटिस्फाइंग द बर्गर किंग स्पाइसी पनीर वॉपर। बर्गर किंग, टेस्ट इज किंग।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: In association with
4: Homesar Us, we complete your home. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM
1: जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai ab.
1: Lame jams.
0: का आज का मेरा सवाल था कि जो ग्रीन चिली है वो खाने से ज्यादा जल्दी मिर्ची क्यों लग जाती है rather than red chili. Why does green chili hits faster than red chili? And I've got quite a lot of answers. पर मोस्टली ना लॉजिक पे जा रहे थे लोग और मैंने कितनी बार बताया नहीं यार लेम जैम्स में लॉजिक का कोई काम नहीं है. बट देन आई गेव द हिंट कि यू नो इन चिली के हिंदी वाले नाम ट्राई करके देखो शायद जवाब मिल जाए. तो समीरा जी तो पहली बार में जीत गई थी तो मेरी पहली विनर आज की वो है जो जीत गई है बर्गर किंग के अमेजिंग वाउचर्स. यस एंड द सेकंड विनर इज
2: ग्रीन चिली इसलिए है क्योंकि उसका नाम हिंदी में हरी मिर्ची हरी है जो RRY हरी मीन्स फास्टर दैट्स द रीजन.
0: करेक्ट ये थे इरफान जी. सो यस द करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट इज हरी मिर्च HURRY जल्दी करने वाला हरी इसलिए उसे जल्दी मिर्ची लग जाती है. गुस्सा आ रहा होगा आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी है. लेकिन देखो लेम जैम से मैंने तो पहले ही बताया था यू साइन अप फॉर दिस सो यू कांट गेट एंग्री ऑन मी. ओके बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेमनेस एंड कंग्रेचुलेशन टू इरफान जी एंड समीरा फॉर विनिंग अमेजिंग वाउचर्स बाय बर्गर किंग. एंड यू गाइज विल गेट अ कॉल कब कैसे कहाँ से कलेक्ट करना है वो सब बताने के लिए. सो जरा अपने फोन के आसपास रहिए ठीक है. बाकी अभी वक्त हो गया मेरे जाने का. मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे. थर्सडे है तो भाई एंजॉय करेंगे वीकेंड आ गया है. आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

0: ही माहौल को जो है वो गर्म कर दिया यार। आई लव दिस ट्रैक। इस गाने में बहुत कुछ सच्चाई जो है ना वो आज की जिंदगी के बारे में, आज की डेटिंग लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा है। मैं क्या जी सोनियो के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आ चुकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। कैसा रहा आपका दिन?
1: सौ बार जन्म लेते लिए तेरे इश्क में मर जाए, जो भी आना हो किसी आशिक में कुछ ऐसा कर जाए।
0: और ऐसा तो किया यार आप लोगों के लिए।

लिए गाने जो है वो आ चुके हैं और अपने पूरे दिन के बारे में बताने के लिए और क्या हाल है आपके सब कुछ बताइए। चार घंटे अपने ये 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ, तो देखो जहां पर भी जाओ पर मुझे साथ में रखना। मेरा शो जो है वो एक मिनट के लिए भी आपके कानों से दूर नहीं होना चाहिए। 3311063 आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजिए एंड यस मैच की अपडेट भी देने वाली हूँ। आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, तो फिर आपको जो डाइट तोड़ते हुए चीज हम खाते हैं फास्ट फूड, आज वो मिलने वाला है, वो तैयार रहिएगा, उसके बारे में बताऊंगी यार। पहले तो ये एक दिन से बहके यार।

0: Let's the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
4: जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

0: होते हैं लारे लगाने वाले कुछ आपके दोस्त जो वीकेंड पे बोलते हैं फन करेंगे और उसके बाद वीकेंड पे खुद ही सो जाते हैं यार, उनके अपने प्लान जो है वो हो जाते हैं। ये एक्चुअली मेरे जैसे दोस्त है ना, जो कभी कभी मेरा भी ऐसा जो मन है वो करता है कि मैं ऐसे कर लूं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हैं। लेकिन अभी मैच जो है वो क्या कह रहा है आपसे उसकी अपडेट जो है मैं आपको दे देती हूँ। एक नंबर हैदराबाद और पंजाब का मैच जो है वो चल रहा है और हैदराबाद अभी खेल रही है। 4 ओवर कंप्लीट होने के बाद हैदराबाद का स्कोर है 54 और एक विकेट का नुकसान जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो पंजाब को कर रही हूँ, आप बताओ 3311063 पर।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global K site Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.
5: Zabardast hit.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬੋਲਣਾ
1: ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ तुझको देखूं के प्यार करूं
0: समझ नहीं लगती ना यार अभी ये वेदर वेदर को तो बिल्कुल भी प्यार नहीं है यार
1: मौसम आपके सुनो
0: लेकिन अगर कल के मुकाबले में आज की बात करें आज का टेम्परेचर जो था वो फिर भी थोड़ा सा ओके ओके था क्योंकि कल जो था वो मामला 40 तक मैक्सिमम जो था वो पहुंचा था आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 28 डिग्री सेल्सियस और अभी के लिए टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 37% है विंड जो है 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है सो ये है मौसम के हाल वापस लौट के आज अपनी डाइट के हाल खराब कर लो यार कोई बात नहीं वंस इन अ वाइल चलता है क्यों बोल रही हूँ बताऊंगी यार

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुबर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

अच्छा। किसे दुनिया चाहिए, जरा हटके जरा बचके से आप ये गाना सुन रहे हैं। हैदराबाद और पंजाब का मैच चल रहा है और हैदराबाद अभी खेल रही है। 11 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 124, दो विकेट जो है वो जा चुके हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी खाने पीने की। ऐसी बातें करने में मुझे बहुत मजा आता है और खाने पीने के काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि खाना पीना मेरा फेवरेट है यार। ओके, सो आज जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे है। सो जब भी हमारा डाइट करने का मन नहीं होता या जिस दिन हमारा चीट डे होता है तो हमारा मन जो है वो फास्ट फूड खाने का करता है, राइट? सो ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल डाइट डे पर हम आपको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन के लिए अपनी डाइट जो है आप तोड़ लो, लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्ट लेना वैसे ही जैसे आप अपना रेगुलर रूल जो है वो फॉलो करते हैं, डाइट जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन आज है इंटरनेशनल नो डाइट डे। अगले घंटे तैयार हो जाइए, आपके पास मौका है बर्गर किंग की तरफ से फूड वाउचर जीतने का। अगर आपको ये फूड वाउचर जीतने हैं और अपनी डाइट को तोड़ना है तो तैयार हो जाइएगा, बस थोड़ी देर में वो आपके लिए कॉन्टेस्ट लेके आ रही हूँ। सुंदरी रेडियो ऑलिव कर कहती है जी ओविंद।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

सोने की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में एक नंबर

की ब्यूटीफुल करके चुल सारे गाने जो है वो आप लोगों के लिए चलेंगे। अगर आपको अच्छे गाने सुनने की चुल है, अच्छी बातें सुनने की चुल है, तो जबरदस्त इवनिंग्स जो है सुनिए रेडियो ऑलिव सुनिए, और मेरी बातें जो है बस थोड़ी सी देर में और ज्यादा सुनिए, क्योंकि इसी घंटे इंटरनेशनल नो डाइट सेलिब्रेट करते हुए बर्गर किंग की तरफ से आपको मिलने वाले हैं फूड वाउचर। सो तैयार हो जाइएगा, थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम है तो मैं थोड़ी देर में मिल लूँ।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: डैडी गली पुलके भी आया करो। देखो यार, आज एक काम करो, नो डाइट डे की गली में जो है वो पुलके आ जाओ। और आपका फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल करने दीजिए, इंटरनेशनल नो डाइट डे है। आज अपनी डाइट को एक दिन के लिए जो है एटलीस्ट एक मील के लिए ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है बर्गर किंग की तरफ से फूड वाउचर्स जीतने का। एग्जैक्टली, मेरे पास जो है वो दो लोगों के लिए वाउचर्स हैं। सो अगर आप ये फूड वाउचर जीतना चाहते हैं बर्गर किंग की तरफ से, आपको विद इन 20 to 30 seconds, बिल्कुल 20 to 30 seconds के अंदर आपको बर्गर किंग के बारे में बताना है कि वाई यू लव बर्गर किंग एंड वाई यू लव मी। दोनों तारीफ को है, आपने किस तरह से क्रिएटिवली आप कैसे रैप करते हैं वो आप अपने तरीके से देखिए, अगर आप ये बर्गर किंग की तरफ से फूड वाउचर जीतना चाहते हैं। वाई यू लव बर्गर किंग एंड वाई यू लव मी 3311063 पर आप वॉइस नोट जो है वो भेज सकते हैं। प्लीज लिख के मत भेजिएगा प्लीज।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske

0: सोनियों की दादी की हालचाल सत श्री अकाल। सिमरन कौर आपके साथ एक दिन के लिए आप लोगों की डाइट हम तोड़ेंगे, सिर्फ एक मील के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल नो डाइट डे है। अपने आप को खुश करना, अपने आप को पैम्पर करना है, तो आपका फेवरेट वाला मील जो है तो वो आपको खाना पड़ेगा। बर्गर किंग की तरफ से मैं आपको मील वाउचर्स दे रही हूँ, और शर्त ये है कि आपने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है जिसमें आप बर्गर किंग से क्यों इतना प्यार करते हैं और साथ साथ सिमरन कौर से आप इतना क्यों प्यार करते हैं, दोनों चीज़ें आपने क्रिएटिवली जो है वो बतानी है। देखिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिसमें कभी तो आप सिर्फ मेरी तारीफ करे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कभी सिर्फ बर्गर किंग की तारीफ किए जा रहे हैं, दोनों की इकट्ठे तारीफ करनी है यार। और विद इन 25 to 30 seconds के बीच में रैप अप करिएगा और भेज दीजिएगा 3311063 पर, जैसे कि हमको इनका वॉइस नोट आया है।
1: Hi Simran.
0: Hello.
1: First of all, this is Rahul, and it is very obvious you are the best RJ in the Qatar.
0: Ouch.
1: So that's why I love you, because of your energy. Mm-hmm. It gives us instant boost whenever I am listening to you. Even my family, my kids, we have met multiple.

0: times on multiple occasions. So you are just fantastic and you makes our day. And Burger King, who doesn't love Burger King? It is the best burger in Qatar. I was not eating this in India, but here it's just fabulous. And you know, my kids, they are absolutely fan of Burger King. So wow, it is the best burger available in the market. So that is why I love it.
1: बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे. आपने बर्गर किंग की तरफ से ये जो वाउचर है वो जीत लिया है. बट अभी जो बाकी हमारे लिसनर्स जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि बर्गर किंग की तरफ से आपको ये जो वाउचर मैं दे रही हूँ वो इसीलिए मिलेगा जब आप पूरे रूल्स को फॉलो करने वाले हैं. रूल्स किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? रूल आप इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि आपको मुझे बर्गर किंग के बारे में बताना है. बर्गर किंग की तारीफ जो है वो आपने जो है करनी है, और 3311063 पर. ओके, एंड उसके साथ साथ आपने मेरे बारे में भी जो है वो बताना है कि आप मेरे से कितना जो है वो प्यार करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता लगनी चाहिए ना. दोनों की तरफ से चीज़ें जो है जब पता लगेंगी तभी मैं आप लोगों को ये वाउचर जो है वो दे पाऊंगी. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास.

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: यार ये फिर से घास फूस. बट बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस. अरे यार फिर से ककड़ी. ना स्वाद है ना कुछ है. बट चिप्स साउंड्स लाइक दिस. ये करेला क्यों हेल्दी है यार? कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका. बट हॉट चॉकलेट स्वीट भी है, सूदिंग भी है. यू नो व्हाट, समटाइम्स इट्स ओके. एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो.
3: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं. लेट्स सेलिब्रेट नो डाइट डे और खाओ बिंदास.
4: Presented by
3: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर.
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट.

0: स्टूडियो के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ 6:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और आज मजे करवा रहे हैं आपको बर्गर किंग से
1: प्रेजेंटेड बाय
2: मसालेदार कुरकुरा और बेहद स्वादिष्ट बर्गर किंग स्पाइसी पनीर वॉपर बर्गर किंग टेस्ट इज किंग।
0: मतलब सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है यार। बर्गर किंग के बर्गर स्पेशली मुझे इनका पनीर वाला बर्गर जो है बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको उनका तो मजे हो जाते हैं राइट। इंटरनेशनल नो डाइट डे है और आज हम कह रहे हैं कि आज डाइट मत करिए, एक मील जो है वो अपनी मर्जी का खाइए। जब मर्जी खाते हैं तो फिर भाई वो बर्गर हो गया, ये फ्राइज हो गया, ये स्वाद लगता है यार। और मैं आपको मौका दे रही हूं ये जीतने का बर्गर किंग की तरफ से फूड वाउचर। सो ये किस तरह से आपको मिलेंगे, आपने बताना है कि व्हाई यू लव बर्गर किंग एंड व्हाई यू लव मी, दोनों को मिक्स करके बताओ यार तो मजा आए।
3: हाय सिमरन, दिस इज पंकज।
0: हाय पंकज।
3: सिमरन, बर्गर किंग और तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारा रेडियो ऑलिव सभी बेस्ट हैं। बर्गर किंग तो इसलिए बेस्ट है, देखो हमें प्योर वेजिटेरियन और जो पनीर वाला बर्गर हमें बर्गर किंग में मिलता है वो और किसी में तो मिलता नहीं है, ठीक है, वेजिटेरियन ही नहीं मिलता। एक तो कम से कम बर्गर किंग को थैंक्स है, एक वेजिटेरियन बर्गर रखा है उन्होंने और वो इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि एक से तो होता ही नहीं हमारा।
0: बिल्कुल यार,
3: दो दो तो खाने ही पड़ते हैं।
0: करेक्ट।
3: रही बात तुम्हारी, तुम भी बेस्ट हो। तुम्हारा पहले मॉर्निंग वाला आता था शो, उसके बाद अभी शाम को आता है, ठीक है, तब भी मैं रेगुलर था, अभी मैं रेगुलर हूँ। कुछ नहीं होता तो हम सिर्फ ड्राइव पे निकल जाते हैं ऑलिव लगा के, एक घंटा घूमते हैं कतार में, वापस घर आ जाते हैं, हमारी वही बहुत अच्छी इवनिंग हो जाती है।
0: स्वीट यार।
3: चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू सो मच। बधाइयां बधाइयां, बहुत सारे पटाखे बर्गर किंग की तरफ से, आपने ये मील वाउचर जो है वो जीत लिया है और थैंक्स टू बर्गर किंग जिन्होंने इस दिन को खास बनाया और हमारे हर दिन को जो है वो खास बनाते थे। जब ऐसा होता है कि कुछ और कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया सा खाने का मन होता है तो बर्गर किंग से ऑर्डर कर लो यार, बर्गर मजे आ जाते हैं। सिमरन कौर आपके साथ, जी ओम बिंदास।
4: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: You're listening to Radio Olive 106.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी का

0: सही है, लेकिन एक सही बात आपको बता दी होगी यार, अपन ना खाने पीने के मामले में इतना उलझ गए, नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे का कॉन्टेस्ट में इतना उलझ गए कि आपको मैं स्कोर अपडेट ही नहीं दे पाई, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हैदराबाद और पंजाब का मैच जो है चल रहा है, हैदराबाद अपनी पारी खेल चुकी है, 236 रन का टारगेट जो है पंजाब के लिए दिया गया है। पंजाब अभी खेल रही है 2.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 16 और 2 विकेट ऑलरेडी पंजाब के जा चुके हैं। टेक्निकली 104 बॉलों पे 220 रन जो है बनाने हैं। मैंने कहा हरिया मतलब मामला खींचना पड़ेगा तभी जीतोगे यार। सिमरन गौरिया आपके साथ, जी बिंदास।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

आपकी आ गई यार, वो है ना है पता नहीं यार मेरे को उसका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9th मई तक का टाइम है आपके पास। डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड, जी हाँ, ये आउटडोर थीम पार्क है 900 पार्क में, जहां पर अगर आपको राइड्स लेने का शौक है, अगर आपको लाइव शोज, परफॉर्मेंसेज, मैस्कॉट्स और ये मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जहां पर एज का कोई टेंशन ना हो, सब लोग मस्त जो है वो फन कर सके। सो और जब मस्ती करने के बाद, इतना फन करने के बाद भूख लगे तो सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाए। तो सारा एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट वाला है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाने वाला है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो डुगोंग एडवेंचर की टिकट्स जो हैं वो स्नूनू एस सिटी पर जाके बुक कर लीजिएगा। एंड वीकडे की टाइमिंग इसकी 4 PM to 10 PM है, और वीकेंड की टाइमिंग जो है 4 PM to 11 PM तक। सो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं।

0: के मजे आते हैं कि जो पल मिले नसीब से करीब से, मतलब लिरिक्स मेरे इधर के उधर हो जाते हैं, लेकिन आप जियो यार जिंदगी को।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के।

सुनियो गीता दी की हाल चाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। और अब Gen Z Decoded में आपको बताती हूँ बहुत ही कूल वर्ड। मैं क्या जी, देखो यार, Gen Z जो है लिंगो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट? और Gen Z जो है डेटिंग अगर बात करें, सो डेटिंग, Gen Z डेटिंग में एक वर्ड जो है ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई इंसान, मान लीजिए उसने आपको गोस्ट कर दिया, आपको नहीं पता कि वो इंसान कहां पर है, बट स्टिल वो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहा है, पोस्ट लाइक कर रहा है, एंड सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसकी, लेकिन स्टिल ना तो वो आपसे बात कर रहा है ना ही वो आपको टेक्स्ट कर रहा है। सो उसको कहते हैं ऑर्बिटिंग। इसमें ओ माय गॉड, 7:35 and 40 seconds स्टूडियो की घड़ी पहुंच चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है। क्विकली मैं आपको स्कोर जो है वो बता देती हूँ। पंजाब देते बुरे हाल ने यार, 236 रन का टारगेट हैदराबाद ने दिया है। पंजाब अभी खेल रही है और 7.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 67। पंजाब के 4 विकेट जो हैं ऑलरेडी जा चुके हैं। मम्मी यार, मैं नहीं, पंजाब जिताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। 74 बॉल्स पे 169 रन्स जो हैं वो जीतने के लिए चाहिए। ऐसे कैसे होगा यार, मुझे लगता है मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा अब। कैसा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब ऐसे उनको लग रहा होता है कि कोई अपना काम जो है वो सही से नहीं कर रहा है, तो उनको लगता है उन्हीं को जाना पड़ेगा, चाहे आता कुछ ना हो। मुझे भी नहीं आता, मुझे बैट भी पकड़ना नहीं आता ब्रो, मुझे तो उतना ही समय लगता है। ओ चौका लग गया, ओ छक्का लग गया, अरे वाइट बॉल हो गई है, बस मैच जीत गए।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: यार ये फिर से घास फूस। बट बिरयानी स्मेल्स लाइक दिस। अरे यार फिर से ककड़ी, ना स्वाद है ना कुछ है। बट चिप्स Sounds like this. ये करेला क्यों हेल्थी है यार, कड़वा भी है, जूस भी पीना उसका। But hot chocolate, sweet भी है, soothing भी है. You know what? Sometimes it's okay. एक ही तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो।
4: और आज हम आपको हैप्पी नो डाइट डे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये सब खा के आप ऑलरेडी हैप्पी हैं। Let's celebrate No Diet Day on Khao Bindaas.
5: Presented by
4: Spicy, Crispy and Irresistibly Satisfying. The Burger King Spicy Paneer Whopper. Burger King, taste is king.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: जॉय आलूकास, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर।
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट।

तो दिक्कत है, जिमे कवेगा करांगी रांझे अवे। क्या रांझा भी वैसे करता आपके लिए? मुझे दिक्कत है उन लोगों से जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि हाँ मैं उनकी सारी बात मानती रहूं, और सारी बात पे जो है वो मतलब मैं एक्सेप्ट करती रहूँ सारी बातें, लेकिन सामने वाला जो है वो जब मतलब वो मेरे लिए उतना भी ना करे, तो ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। इसलिए मैं मेरा सर्कल जो है ना बहुत छोटा रखती हूँ। मुझे क्या होता है कि जब अपने लोग रहते हैं ना, आपके जो अपने एक दो तीन जो भी दोस्त हैं आपके, आपकी लाइफ में जो रहते हैं, वो आपको जानते हैं, आप समझते हैं, अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ। वो जो थ्योरी है जो लोग बोलते हैं अरे डोंट एक्सपेक्ट, भाई मैं करती हूँ, मैं नहीं मानती उस चीज़ को। बट यस, अगर ऐसे लोग आपने देखे होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको पता है कि उसने हर बात पर हाँ बोलना है, हर बात पर हाँ जी कर देना, हर बात पर जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है, लेकिन द मिनट आप उसको ना बोलेंगे सामने वाले का माथा हट जाता है, वो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए भी होता है क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो सामने वाले इंसान को। सो मेक श्योर कि अगर आप सामने से जो है वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए करता रहे, तो आपको भी करना पड़ेगा ना यार।

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

0: लोगों तो स्कोर ना पूछो, हूँ तेन स्कोर मैं ही दस देनी हूँ यार। बताते हुए भी थोड़ा सा दुख दर्द जो है वो मेरे को आज हो रहा है। सो हैदराबाद और पंजाब का मैच चल रहा है। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 236 रन का टारगेट दिया, 15 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब का स्कोर है 130, 6 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, 30 बॉलों पर 106 रन बनाने हैं उनको। आई डोंट नो, वापस लड़के में आप लोगों का नाम लेने वाली हूँ, नेम गेम शुरू होने वाला है। वेल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पे मैं बोलूँ, तो आप अपना नाम टाइप करके रखिएगा, जैसे मैं आपको बोलूँ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most love kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global K site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Awesome.
3: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
4: Awesome.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी

प्यारा हंस रही है ना। सिमरन कौरे आपके साथ और अब टाइम आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे लूं तो आप अभी के अभी अपना नाम मुझे लिख के व्हाट्सएप करिएगा 3311063 पर। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। नो हाई नो हेलो रूल यही है दोस्त। अगर अभी एक से ज्यादा नाम बुलवाना चाहते हैं तो एक के बाद एक नाम लिखिएगा, क्योंकि मैं मैसेज ओपन नहीं करती हूं, सिर्फ नाम सामने से पढ़ती हूं। मोहम्मद इमरान जी, प्रीति हुसैन, थैंक यू सो मच, शाहबाज जी, राजीव मोदी, पूजा, डेजी, राहुल, जीन पॉल, फानू, फारा चांद, यूसुफ, सुबोध, तलहा, गुज्जर, जावेद, फातिमा, ऑलरेडी मैं आपका नाम बोल चुकी हूँ, आलम जी, थैंक यू सो मच, अदील भट्ट जी, थैंक यू सो मच, सलीम जी, थैंक यू सो मच, बशीर जी, थैंक यू सो मच, दाबा जी, थैंक यू सो मच, प्रीति हुसैन, ऑलरेडी आपका नाम ले लिया, श्रवण कुमार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, केपी जी, थैंक यू सो मच, अखिल चरण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, गुज्जर जी, थैंक यू सो मच, हाफिज जी, थैंक यू सो मच, जावेद जी, थैंक यू सो मच। क्विकली सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए 3311063। ये व्हाट्सएप का नंबर है। संतोष जी, थैंक यू सो मच। किसी अच्छा नहीं सलाम तो आपने लिखा, सलीम कोई और है यार, आपका नाम थोड़ी होगा। अरमान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शेख उमेर जी, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए यार, और कुछ नहीं है। इब्राहिम जी, दानिश जी, थैंक यू सो मच। तजिंदर जी, थैंक यू सो मच। अगेन मैं मैसेज ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि सबके नाम पढ़ने होते हैं, सो मैसेज ओपन करने लगूंगी तो उस नाम ही नहीं ले पाऊंगी किसी का। जावेद जी, थैंक यू सो मच। सूरज जी, थैंक यू सो मच। आशिको रहमान, आकाश, थैंक यू सो मच। गुलाम जी, थैंक यू सो मच। वलीद जी, थैंक यू सो मच। उमर जी, थैंक यू सो मच। आशुतोष सक्सेना जी, थैंक यू सो मच। शाहिद जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के नाम ले लिए दोस्त, अब आप थैंक यू लिखिए और बना दीजिए लाल रंग वाला दिल, नहीं तो आपका कोई भी फेवरेट वाला इमोजी जो कि आप यूज करते हैं। सबा जी, थैंक यू सो मच। अफरोज जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट यार, अभी मेरे को गर्दन घुमाने दो वरना आप लोगों के नाम ही याद रहेंगे। 2-1 एंड गो।

0: वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

यार सतेंद्र सरताज मतलब क्या कमाल के यू नो सिंगर है, और स्पेशली ये गाना इनका, बस तमीज से सुनिएगा इसको।

बहुत ही कमाल, इन शॉर्ट बवाल। सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ।

क्या दिक्कत है, अभी फिलहाल आपको प्यार हो जाएगा आपकी टीम से, क्योंकि वो जीत चुकी है, क्योंकि मेरी टीम हार चुकी है यार। हैदराबाद एंड पंजाब का मैच था, हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 236 रन का टारगेट दिया एंड आज का जो मैच है वो हैदराबाद ने 33 रन से जीत लिया। बधाइयां मिठाइयां तो बहुत सारे पटाखे। चलिए अब सिमरन कौर की गलती माने का टाइम आ चुका है, कल अकेले नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी। सो खाने पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे उड़ने वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सकिलो।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio
1: Olive. I'm a number one. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

अच्छा, लाइफ में ना सब कुछ सर्कल है। आंखों ने आम का पेड़ देखा, अब उतारने के लिए, आम खाने के लिए पैरों को बोला तो पैरों को वहां तक पहुंचना पड़ा। अब आम उतारने के लिए तो हाथों का इस्तेमाल होगा, हाथों ने आम उतारे। अब खाने के लिए तो जुबान का काम होगा, जुबान ने बड़े से मजे लेकर वो आम खाए। अब हजम करने के लिए पेट का काम होगा, लेकिन अंत में माली ने देख लिया। अब माली ने जब देखा तो अपनी लाठी उठाई और कमर के जोर से खींच के मारा। अब बेचारा जिस कमर का कोई कसूर नहीं था, उसको तेज की लग गई, डांट पड़ गई, उसको खूब पिटाई हो गई, धै छड़ियां। अब लास्ट में उस कमर पर चोट लगने से आंखों से आंसू बह गए। जिस आंख ने वो पेड़ पर आम देखा, आखिरकार कसूरदार को उसकी सजा ही मिली। 106.3 रेडियो ओलिव्स, आपके दिल की आवाज। मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। तो जब आप ये फिलॉसफी को अपनी लाइफ में यार बनना समझ लोगे ना, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी लाइफ में आपको दिन भर यार कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपका नाम लेकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, कितने सारे लोग मिल जाते हैं जो आपका नाम लेके क्रेडिट्स लेने की कोशिश करते हैं। हर ऑफिस में ऐसा पक्का कोई ना कोई ऐसा नमूना होगा जिसको काम धाम नहीं आता, लेकिन आपके किए हुए काम पे अपना नाम क्रेडिट्स लेने के लिए हमेशा रेडी रहता होगा, नहीं जिसको देख देख के आप परेशान होते होंगे, आप सोचते होंगे ऐसे लोग सही है। नहीं, ऐसे लोग सही नहीं है। सो डोंट वरी, यू आर द राइट वन। आपकी चीज आपको ही जिताएगी, आज नहीं तो कल उसको सताएगी। फिलहाल अभी तो शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी शाम की, जो आपकी प्यारा सा इस दिन को खूबसूरत बनाएगी। तो इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और कौन सी धुनात सुनना चाहते हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल इस गाने के साथ जियो बिंदास।

0: वैसे जनाब आज की इस डिजिटल दुनिया में ना इंसान की प्रोफाइल फोटो और साथ ही आपका नाम इतना मायने नहीं रखता जितना आपका ब्यूटिक मायने रखता है। नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी कद्र है। कहते ना इंसान की वैल्यू नहीं है उसके उसके पद की, उसकी पोजीशन की, उसकी डेजिग्नेशन की वैल्यू है ना, उसके स्टेटस की वैल्यू है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज है ना, मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं
1: रील वाली रियल कहानी।
2: रील वाली रियल कहानी।
0: दोस्तों डिजिटल दुनिया का वो छोटा सा सिंबल ब्लू टिक जो हर सोशल मीडिया प्रोफाइल के नाम के साथ चमकना चाहता है, क्या आप जानते हो कि इसके पीछे का क्या मैजिक है? आज की रील वाली रियल कहानी में ना हम यही जानेंगे कैसे और कौन पा सकता है ये वेरिफिकेशन बैच। सबसे पहली बात, आपका अकाउंट होना चाहिए ऑथेंटिक यानी रियल पर्सन या रजिस्टर्ड बिजनेस। दूसरा, अकाउंट यूनिक होना चाहिए एक ही पर्सन या बिजनेस के लिए सिर्फ एक प्रोफाइल। और तीसरी बात, प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोफाइल फोटो बायो और कम से कम एक पोस्ट तो आपकी पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट अकाउंट मत रखना दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंट होना चाहिए नोटेबल यानी मीडिया कवरेज रिसर्च हो गई और पब्लिक इंटरेस्ट में जरूर होना चाहिए। और हाँ, आप अब इस बैच को मैंने देखा है लोग मतलब बाय कर लेते हैं, खासकर इंडिया में ये लोग बाय करते हैं और फिर उस बैच को लगाते हैं। पर ये मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, अगर आपकी व्यूज़ अगर उतने नहीं हैं जो आपकी रील्स पे दिखते हैं, मुश्किल से 100, 500, 200 हैं और आपके मिलियंस में आपने फॉलोअर्स फेक फॉलोअर्स भी ले लिए और आपका ब्लू टिक भी लग गया, आई डोंट थिंक सो कि वो ऑथेंटिक लगेगा। नहीं, बाकी नहीं नहीं, आपकी चॉइस है। मेरा मानना है कि मेहनत करी जाए तो ब्लू टिक भी आसानी से खुद चलकर आ जाएगा। फिलहाल तो ये गाना चलकर आए, तो आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? आपने सफर में बस वॉल्यूम हाई कीजिए, वाइब्स यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ। जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Midnight Love.

अच्छा आज के टाइम पे बॉलीवुड हॉलीवुड पे बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत पैसा कमा रही हैं, यू नो पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हैं और मतलब सुपर हिट कहला रही हैं आज के टाइम पे, लेकिन यार वो फॉरएवर ग्रीन नहीं बन पा रही। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज सुना, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं

फ्लैशबैक। तो फिल्मी फ्लैशबैक का अब टाइम आ ही गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। आप अपना इंस्टाग्राम फटाफट जिसको तरह से स्क्रॉल कर रहे हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी को ढूंढ रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, सर्च पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके रिश्तेदारी बढ़ा जाएगी, क्योंकि उससे आपके दिल को सुकून मिलने वाला है। कैसे? एक तो सारी अपडेट्स आएंगी जनाब, जो सा गाना कहोगे वो सुन पाओगे, और इसके साथ

अरे मैसेज देखो यहाँ पे साइड में वेट, अरे आ गए आ गया आ गया, पहला मैसेज आ गया, आंसर अभी नहीं, आंसर अभी नहीं, अभी और आने दो मैसेज। जल्दी से रेडियो ऑलिव के पेज पे आप भी जाकर इनबॉक्स में सही जवाब दो, जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया उसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि जवाब तो सबसे पहले बहुतों के आते हैं लेकिन सही वाले की भाई अलग ही है ना, अलग ही कदर होती है। तो फिलहाल आ रहा हूँ वापस, कदर तो इस गाने की भी है क्योंकि ये गाना आया है आज भी सबका दिल जीतता है। जियो बिंदास।

अच्छा कुछ फॉरएवर ग्रीन मूवीज होती हैं जिनको कभी भी कितनी बार भी देख लो यार मन ही नहीं भरता, और उन्हीं से हमारी कुछ इंडियन फैमिलीज इंस्पायर्ड है ना। उन्हीं के देखने के बाद से ये होता है कि हमारी भी एक जॉइंट फैमिली हो और ऐसी फैमिली हो, ऐसी सब लोग मिलके एक साथ बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं, है ना, हम साथ सहायता पे एक साथ गाना गाएं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़ सुना, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और अभी हम जा रहे हैं

0: फ्लैशबैक।
1: तो इस फिल्मी फ्लैशबैक में इस रात के समा में मैंने पूछा था कि ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जो इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स लाई थी। तो अभी तक की जो सबसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स हैं वो मेरे को सही आंसर अभिनव जी ने दिया है। इन्होंने बोला है सूरज आर ब्रजत्या जी ने सबसे ज्यादा फैमिली वैल्यूज और रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे सजाने की कोशिश की है। क्या बात है यार। वैसे कुछ आइकॉनिक फिल्म्स हैं जैसे मैंने प्यार किया 1989 की मूवी है, हम आपके हैं कौन वाओ दिस मूवी, 1994 की मूवी है और हम साथ साथ है यार, ये हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ है, क्या बात है यार। 1994 के बाद 1999 में आई थी ये हम साथ साथ है और इसने तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं किया बल्कि एक पूरी जनरेशन के लिए फैमिली सिनेमा का स्टैंडर्ड सेट हुआ था, है ना। वैसे दोस्तों जब भी अगली बार से ऐसी फिल्म्स देखो ना, इनको वापस से देखने का मन करे तो याद रखना हर स्माइल हर सेलिब्रेशन और हर ड्रामा के पीछे ना सूरज आर ब्रजत्या की फैमिली ओरिएंटेड विजन छुपी हुई है, है ना। तो फिल्मी फ्लैशबैक में बस फिलहाल अभी इतना ही, अभी इसके बाद एक गाना रेडी खड़ा है तो चलिए एक साथ एंजॉय करते हैं इस इवनिंग को, धमाकेदार बनाते हैं जियो बिंदास।

अच्छा, रात का सुकून, चांद की हल्की सी रोशनी और आपके दिल की कहानी। डिजिटल डायरी में आज हम बात करेंगे उन लॉस्ट कनेक्शंस की, जो कभी हमारे जिंदगी के खास हिस्से पे थे पर आज वक्त के साथ दूर हो गए। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज चलाओ। मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, डिजिटल डायरीज में। जी, कभी एक पुराना रिश्ता, ऐसे लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ना, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल मना लेते हैं, राइट? और फिर किसी वजह से रास्ते अलग हो जाते हैं। डिजिटल डायरी के आज के पेज पे लिखा है, कभी कभी मैं उससे बात करने का सोचता हूँ पर शायद वक्त और सरकमस्टेंसेस ने हमें अलग कर दिया। फिर यही सोच के शांत हो जाता हूँ, वापस से लिखता लिखता उसको टेक्स्ट करता करता उम्मीद छोड़ देता हूँ। पर दोस्तों, हर लॉस्ट कनेक्शन का एक लेसन होता है, ग्रेटिट्यूड फॉर द मेमोरीज और होप फॉर न्यू बिगनिंग्स। हो सकता है कल कोई नई कहानी शुरू हो, पर आज की रात में उन यादों को याद करके हम अपने दिल को थोड़ा सा वार्म तो कर ही सकते हैं, नहीं? तो चलिए, डिजिटल डायरी में फिलहाल तो इतना ही। एक छोटी सी रात की मुस्कान, एक पुरानी याद और एक नई उम्मीद। अपने लॉस्ट कनेक्शंस को याद करके आज की रात में अपने दिल को हल्का फील कीजिए। इस गाने के साथ उस लॉस्ट कनेक्शन के लिए कुछ यादें हैं तो उनको याद कीजिए। जियो बिंदास।

हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

अच्छा, रात का सुकून और चांद की रोशनी और एक कहानी हो जाए, क्या बात है, इंस्पायर हो जाने नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में कुछ ऐसे डांस स्टेप्स होते हैं जो हमको ना रट जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब घर के कर रहे होते हैं ना, मजा आता है उनको देखकर। ऐसा होता है आई यही है अपना डांसर, अपने पूरे परिवार का, पूरे खानदान का डांसर है नहीं। वैसे एक डांसर और है जिनकी आज एक रात एक कहानी में स्टोरी सुनाने का बहुत मन कर रहा है, तो आइए सुनते हैं। तो आज एक रात एक कहानी में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक लेजेंड सरोज खान जी की। सरोज खान का असली नाम एक्चुअल में निर्मला नागपाल था। उनका जन्म उनका 22 नवंबर 1948 में महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उनको क्लासिकल डांस का शौक था, और डेडिकेशन और मेहनत के बल पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने 200+ मूवीज में कोरियोग्राफी की और आइकॉनिक सॉन्ग्स बनाए, जैसे कि जिन पे ऐसी कोरियोग्राफी की जो आज तक और आने वाली जनरेशंस तक वो डांस स्टेप्स को कैरी ऑन रख रही है। 1, 2, 3 सॉन्ग, उसके बाद धक धक करने लगा को हमेशा यादगार बनाया। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स उनके नाम हैं, और इसलिए उन्हें बॉलीवुड की मदर ऑफ डांस कहा जाता है। सरोज खान की कहानी दिखाती है कि पैशन और हार्डवर्क ना कोई भी करे तो अपनी पहचान बना सकते हैं, चाहे स्ट्रगल फिर कितना ही क्यों ना हो, है ना। तो दोस्तों, जर्नी कैसी भी हो, सरोज खान जैसी ही क्यों ना हो, आपका बस एक ही ड्रीम होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ पानी है और करके दिखाना है, किसी और को नहीं, खुद को करके दिखाना है। बस डेडिकेशन और पैशन को कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट रखिए, जैसे ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। प्यारे से गाने के साथ जियो बिंदास।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

ऐसी नींद भी क्या चीज है ना यार, कभी कभार तो रिफ्रेश करती और कभी कभार तो रीस्टार्ट की नौबत ले आती है। मतलब समझ नहीं आता पीछे जाके बार बार सोचना होता है वो सपना आया क्यों था और किस लिए आया था, क्या मैंने दिन में इतना स्ट्रेस लिया था कि मेरे बार बार माइंड में वही चीज आ रही थी। वैसे नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक जर्नी है माइंड और सोल की पीस तक। तो चलिए बिफोर यू स्लीप में आज जानते हैं इंटरेस्टिंग बेड टाइम फैक्ट। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और हम बात करेंगे बिफोर यू स्लीप। क्या आप जानते हो एक अडल्ट इंसान अपनी नींद के दौरान एवरेज 4 to 6 ड्रीम्स देखता है, पर अक्सर हम सिर्फ एक या दो ही याद रख पाते हैं, बाकी सपने सबकॉन्शियस में कहीं खो जाते हैं, जैसे दिल के किसी कोने में छुपी अधूरी कहानियां। तो सोचो हर रात हम अपनी आंखों के पर्दे के पीछे एक नई कहानी लिखते हैं, बिन जाने बिन समझे। तो जनाब आज जब आप नींद में खो जाए ना, अपने सपनों को थोड़ा सा महसूस करना, हो सकता है कोई एक सपना आपके दिल से कुछ कहना चाह रहा हो। स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर कर लेंगे गुड नाइट। अभी तो क्रेविंग वाला टाइम भी रहता है ना, रात को बिना फ्रिज में कुछ देखे ढूंढे निठाले या कुछ ऑर्डर करे बगैर रात थोड़ी होती है। अभी तो फिलहाल गाना आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा ना मज़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सारा मज़ा यही है। बढ़िया से बढ़िया गाने आपको लेकर आया हूँ, और अभी तो लाइब्रेरी में बहुत गाने रखे, तो इस गाने के साथ चियो बिंदास।

देखो मैंने पहले भी कहा था कि हम सबकी लाइफ में ना एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहीं पहुंचने के बाद सबसे पहले मैसेज ड्रॉप करते हैं। नहीं, फ्लाइट से उतरते ही, फ्लाइट मोड ऑन हटाते ही, उसके बाद सबसे पहले लैंडेड, घर पहुंचते सेफली पहुंच गए, सेफली रीच्ड, मतलब खाना खा लिया, अब ये बना है, आप क्या कर रहे हो, ये सब चीजें हैं जो जताती हैं कि एक इंसान तो सबकी लाइफ में ऐसा होता ही होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स, आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर, कोई तो ऐसा होता है जो आपके लिए हमेशा सबसे पहला होता है ना। तो शायद वो इंसान मैं भी हूं आज, जो जानना चाह रहा है कि आप जहां जा रहे हो यार पहुंचे कि नहीं। हाँ, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में, और फिलहाल अब टाइम हो गया है स्टूडियो से मेरे जाने का, लेकिन आप जहां जा रहे हैं आपका जो सफर है उसे और ब्यूटीफुल सा बनाने के लिए, आप चाहे सफर जिंदगी का हो या गाड़ी का हो, आपका ऐसे खूबसूरत सा बना रहा है, इसलिए मैं अपनी लाइब्रेरी से एक बढ़िया गाना निकाल के लाया हूं, ताकि जो आने वाला सफर है और उम्दा और बहुत खूबसूरत हो। चेहरे की स्माइल की जानी नहीं चाहिए ना यार, यहीं पर करा रहे। यहां से जाने के बाद इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश बस अपने दिल की बात लिखिए। यकीन मानिए आप अकेले नहीं है, आपके साथ हर टाइम मैं हूं। आप मैसेज करके तो देखिए जनाब, जहां से भी रेडियो सुन रहे हैं स्टोरी लगाकर रेडियो ऑलिव को टैग कर दीजिएगा, मैं आपकी स्टोरी को खुद लाइक करूंगा और खुद देखूंगा, और क्या पता रीशेयर भी हो जाए। फिलहाल तो महसूस करने की बात है इस गाने को, आने वाले गाने को जो मैं लगा के जा रहा हूँ। चलता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल को बार बार कहते रहिए जियो बिंदास, जैसा कहेंगे वैसा होगा। स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट, बाय बाय।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 FM.

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.